0: Ang Kuchina.
1: Level 1 investments are subject to market risk. Read all skin-related documents carefully.
2: Mirchi. R-O-C-H-I-E.
3: Roshi, Roshi.
4: Mirchi Roshi.
5: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
6: एक रेड कलर की पोस्टल वैन सामने से जाती है. आप मुड़कर अपने बॉयफ्रेंड से पूछते हो, तुमने विश मांगी? तो वो कहता है हाँ. और तुम पूछते हो कि तुमने क्या मांगा? एंड ही टर्न्स अराउंड एंड सेज, तुम्हारे लिए दुआ मांगी. जब कोई आपसे ये कहता है ना कि तुम्हारे लिए दुआ मांगी, इट्स लाइक टेलिंग समबडी कि मैंने भगवान से तुम्हारे बारे में बात की और मैं बहुत ग्लैड हूँ दैट आई मेट यू. एंड अब मैं भगवान से कह रहा हूँ कि हमेशा तुम्हारा ध्यान रखे और तुम्हें हमेशा सेफ रखे. जब कोई ऐसी बात करता है, इट इज़ सच अ यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ लव. आप इसे पैसों से, गिफ्ट से, प्रेजेंट से, किसी भी चीज़ से तो तोल नहीं सकते हो. बिकॉज जब किसी ने आपके लिए दुआ मांग ली ना, तो दैट इज़ द हाइएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव मेरे हिसाब से. एंड आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज मैं एक इंटरव्यू रिविजिट कर रही थी रवि दुबे का, एंड ही सेड कि जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ, मैं हमेशा सरगुण के लिए सबसे पहले दुआ मांगता हूँ. लकीली दिस इज अ वेरी इंटीमेट कॉन्वर्सेशन ही.

0: हेलो
1: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
0: हेलो
2: हेलो, आप होल्ड कर रहे हैं एक सेकंड भाई साहब,
1: इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो
2: हेलो भाई साहब।
0: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
0: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठा यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे, ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
0: कहाँ भिजवाना है
2: मैं आपको
0: बता दो।
2: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाते
0: हैं जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
0: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
0: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
0: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
0: हाँ
2: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
0: उठवाना है,
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
0: हेलो,
3: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
0: कहाँ से बोल रहे
3: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आप ना मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और नॉटी टेक्स्ट लिखते हो जो पब्लिश भी हो जाते हैं और आपके पास एक ब्लॉग भी है उसके बारे में, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड को इसके बारे में कोई इल्म है नहीं, बेचारे को कोई आइडिया नहीं है, ऐसे गंदे काम.
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: गंदे तो नहीं है, बट लाइक आई एम सेइंग दैट योर बॉयफ्रेंड शुड नो द होल ट्रूथ अबाउट यू, राइट? बट अगर आप उसके साथ शेयर नहीं करना चाहते कि आप कैसे इंसान हो, यू कैन डू इट हियर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. टाइम फॉर द कन्फेशन बॉक्स, एज यू जस्ट हर्ड. नाम के स्पेलिंग ROCHIE. तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर अपना नंबर और कन्फेशन भेज दो. एंड आई कॉल यू लाइक आई कॉल माई मिस्ट्री कॉलर. हाय नॉटी गर्ल.
4: हाय रोशी,
2: हाउ आर यू?
4: Very good. How are you?
2: Actually, आप गुड से भी बेटर हो, क्योंकि आपने मुझे जब अपना कन्फेशन भेजा ना, तो आई वॉज लाइक कि ये क्या इंसान है, इसका दिमाग कितना खुराफाती है. लाइक इट्स अ लेजिटिमेटली डर्टी माइंड यू गॉट.
4: अब परेशानी है रोशी, परेशानी का सलूशन तो निकालना पड़ेगा ना.
2: और ऐसे देखो कैसे. तो एक्चुअली ओके ठीक है, तो हुआ क्या? लाइक स्टार्ट से बताइए मोहतरमा. स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट.
4: स्टार्ट वहां से हुआ कि एक गलत स्वाइप हुआ.
2: हाँ.
4: फिर मैंने सोचा चांस दे देते हैं.
2: हाँ.
4: बट क्लियरली नॉट ऑल मैन डिजर्व अ सेकंड चांस.
2: करेक्ट.
4: देयर वर टू मेनी आउटबर्स्ट, हर बार का निखरे.
2: हाँ.
4: बाहर जाके सीन क्रिएट करना. तो अब विदाउट क्रिएटिंग टू मच ऑफ हैसल, इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से कैसे हटाओ. तो मैंने सोचा एक आइडिया कि मैं अपने इस डेट को एक अपनी US की रिटर्न फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करूंगी.
2: अच्छा.
4: And this was between her and me. So we decided, she sent him a text. She started flirting with him. He was a little interested. So he flirted back, which she of course told me. And after that, she very clearly asked him if he's seeing someone or not. Obviously, we were seeing each other. He would not tell me that he's flirting with someone else. So she gave him an ultimatum that it's either me or this girl that you're dating. He decided to break up with me. Meri friend chali gayi ek hafte baad US aur problem life se bahar.
2: किस तरह के इंसान हो आप कि आपका दिमाग इतना स्मार्ट कैसे चलता है कि लाठी भी टूट जाए और सांप भी ना, व्हाट एम आई सेइंग, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना?
4: लाठी भी ना टूटे. एब्सोल्युटली
2: बेब, यू आर सो क्लेवर. आपको तो मतलब मैं रोशिफिकेशन के साथ साथ अपना दिल भी देना चाहती हूँ. विल यू बी एक्सेप्टिंग बोथ ऑफ देम?
4: यस एब्सोल्युटली.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

थैंक्स फॉर योर एडवाइस डार्लिंग, आई विल थिंक अबाउट इट. ओके बाय. ऐसे ही सार्कास्टिकली आप एक इंसान को जवाब दोगे अगर कोई आपको फैशन एडवाइस दे रहा हो एंड यू योरसेल्फ आर अ फैशन इन्फ्लुएंसर. एग्जैक्टली इसी तरह से जब आप गुस्से में होते हो ना, आपके पार्टनर ने आपको कुछ कहा है बहुत इरिटेट करने के लिए और आपको इतना गुस्सा आ रहा है दैट यू वांट टू किल दैट पर्सन, साइकोलॉजिस्ट एक टेक्निक डिवाइस करके लाए हैं विच इज कॉल्ड थॉट डिफ्यूजन. उसमें क्या होता है कि आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं कि यार ये तुझे प्यार नहीं करता या ये तुझ पर डेफो चीट कर रहा है, इन सब थॉट्स को अगर आप सार्कास्टिकली बोलो थैंक यू फॉर द सजेशन आई विल कम बैक टू इट. अगर आप अपने थॉट्स से अपने आप को थोड़ा सा भी अलग कर सकते हो और इस कॉन्वर्सेशन को टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद योर थॉट्स इज अ वे ऑफ थॉट डिफ्यूजिंग, यू विल एक्चुअली नॉट ओनली फील बेटर बट अगर यू आर इफेक्टिव एट थॉट डिफ्यूजन आपके पास एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव्स होंगे टू लुक एट द सिचुएशन. हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ मिसकम्युनिकेट किया हो सकता है आपने उसे ठीक से परसीव ना किया हो, बट टू गेट टू दिस कंक्लूजन थॉट डिफ्यूजन इज एक्चुअली अ ग्रेट टेक्निक. इसे ट्राई करके देखो स्पेशली इफ योर पार्टनर इज क्रेजी AF एंड ऑलवेज ड्राइविंग यू मैड. एंड इफ इट हेल्प्स यू लेट मी नो ऑल अबाउट इट इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La vierba la murga. Mirci, murga.
2: Hello?
3: Hello, Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर, मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना, वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको, मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगा.
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो.
3: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
2: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश करूँ. तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
2: सुन ले बात, मेरी बात सुन, पहले बात सुन.
3: हाँ सर.
2: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है. सर बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर.
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: Complete के साथ only on मिर्ची It's hot
1: Yeah पकड़
2: हर गाना हिट हर दूसरा गाना सुपर हिट
0: only on Radio मिर्ची It's hot

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप से बाहर किसी के साथ बहुत ही थिक इमोशनल फ्रेंडशिप में हैं, डज दैट अमाउंट टू चीटिंग, यस और नो? इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगी, मैंने ये सवाल आपसे पूछा है, इसका जवाब आप मुझे दोगे इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड टॉकिंग इन अ सिमिलर वे विद अनिल, ही इज विद मी ऑनलाइन. इन्होंने मुझे अपना नंबर भेजा, सो आप भी अपना नंबर भेज सकते हो एंड वील गेट टॉकिंग. बट मीनवाइल, हेलो अनिल.
3: राइट मैम, बोलिए.
2: मैम नहीं है यार, मेरा नाम तो रोशी है.
3: यस, रोशी मैम.
2: रोशी मैम नहीं, खाली रोशी चलेगा.
3: रोशी, ओके. वेरी फाइन मैम, बड़ा ट्राई किया आपको मैंने कॉल करने के लिए, बड़ा ट्राई किया मैंने.
2: सॉरी यार, आपने मतलब काफी तामझाम हैंडल करके यू गॉट टिल दिस कॉल, है ना? आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में?
3: मैम कुछ नहीं, मैम एक फ्रेंडशिप से होगी मेरी आउट ऑफ कंट्री, तो मैंने उसको थोड़ा सा, मैं मैरिड हूं तो मैंने उससे छिपा लिया. बस मेरे को थोड़ा गिल्ट हो रहा है उसको बताऊं ना बताऊं, फ्रेंडशिप अच्छी चल रही है. जनरली वैसा जैसा कुछ सीरियस वाला नहीं है, जनरली जैसे नॉर्मल टॉक होती है. तो मैं आपका सजेशन लेने के लिए, कई बार एफएम नॉर्मली मैं चलाता नहीं हूँ, गाड़ी में जब होता तभी चलाता हूँ. तो ऐसी फ्रेंडशिप होगी मेरी अच्छी खासी, मतलब रोज, मतलब 2-3 महीने हो गए. मुझे ये नहीं समझ आ रही उनको बताऊं कि मैं मैरिड हूँ नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ.
2: एक्चुअली लग रहा है एंगल्स तो बहुत सारे हैं, आई टेल यू व्हाई. एक तो आपने उनको बताया नहीं कि आप शादीशुदा हैं, एंड शी हैज द राइट टू नो, बिकॉज दोस्ती में भी यार शादी होना इज अ वेरी बिग थिंग, राइट? इट्स लाइक सेइंग कि आप कहाँ रहते हो, है ना? सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग दैट यू नीड टू टेल समवन. मोर देन दैट, ये दिस सीम्स लाइक अ लिटिल मोर देन प्लेटोनिक फ्रेंडशिप. आई टेल यू व्हाई, क्योंकि ऐसा नहीं है यार, हर रिलेशनशिप सिर्फ प्लेटोनिक या सेक्सुअल नहीं होता, उसके बीच में भी बहुत सारे ग्रेडियंट्स होते हैं, ठीक है? सो कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो इमोशनली बहुत बॉन्डेड होते हैं, एंड अगर आपकी 3 महीने में अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग हो गई है, आई विल गो सो फार टू से दैट इट साउंड्स लाइक अ वेरी थिक रिलेशनशिप, ठीक है? इमोशनली सिक्योर रिलेशनशिप. सो ना कि सिर्फ आपको इन द पर्सन जिनसे आप बात कर रहे हो उन्हें बताना चाहिए दैट यू आर मैरिड, सो दैट शी कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन कि वो एक शादीशुदा इंसान से दोस्ती रखना चाहते हैं या नहीं. दूसरा, जैसे आपने अपनी पत्नी को नहीं बताया कि आप किसी और से बात कर रहे हैं 3 महीने,
3: yes, yes, yes, yes, yes, yes.
2: है ना? नहीं बताया.
3: मेरे को वैसे मैसेज आया था उस पे व्हाट्सएप पे, तो नंबर तो किसी और का मिला रही थी, तो ऐसे तो मुझे जनरली उसने पूछा तो मैंने बता दिया आई एम नॉट गेट मैरिड. तो वो मुझे ही नहीं पता था कि हम इतनी बात बढ़ेगी मित्र.
2: अच्छा, उन्होंने वो ये कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं आपसे, पूछ चुके हैं कि आप शादी?

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागिन।

0: Ashi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: There's always this one ex जिसे stalk करना आपको बहुत अच्छा लगता है. It's almost your obsession. तो आपके कितने भी ex-boyfriends हो या girlfriends हो, 3, 4, 2, but there's always a one ex जिसके साथ आप particularly obsessed होते हो. और गलती से उस ex ने अगर कभी weight lose कर दिया हो या अपनी DP में किसी और बंदी के साथ photo डाली हो या बंदे के साथ, and you don't know who that other person is, especially if that other person is hot, आपको इतना खराब लगता है ना कि पूरे हफ्ते की बीटी अशोर्ड होती है. लेकिन क्या हम अपनी गलतियों से सीखते हैं? क्या हम उन्हें स्टॉक करना बंद कर देते हैं? ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे ही हम अपने एक्स को एक ग्लो अप अवतार में देखते हैं, वी एंड अप स्टॉकिंग देम इवन मोर. हमारी बीटी हो रही है, दैट्स ओके, लेकिन उसे गालियां देने में इतने मजे जो आते हैं. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई एक स्पेक्टेक्युलर एक्स है, you just can't get over stalking that person, I think you should send me your number and we will compare notes. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ke spelling hai R-O-C-H-I-E. Let's talk about your ex, baby. And while you do that, kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अर्ज किया है, मैं नहीं चाहता वो मेरे बुलाने से आए, मैं नहीं चाहता वो मेरे बुलाने से आए, मैं चाहता हूँ वो रह ना पाए और बहाने से आए। एक्सेप्ट मेरे एक्स ने मुझे ये शेर लिखकर भेजा, एंड आई वाज लाइक यार अगर मैं नहीं आ रही हूँ और तेरा फोन नहीं उठा रही हूँ और तेरे टेक्स्ट का जवाब सिर्फ एक वर्ड में लिखकर भेज रही हूँ, इसका क्या मतलब है? इतना स्मार्ट तो तू है, स्कूल तो तू गया है, वो डिग्री तो मैंने देखी है, कॉलेज वी डोंट रियली नो। बट द पॉइंट इज कि जब आपको कोई भाव नहीं दे रहा होता है, इसका ये मतलब है कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे एक्सेस ये बात समझते क्यों नहीं है, और अगर उन्हें समझ आ जाती है तो उसे विश्वास क्यों नहीं करते हैं? तुम ब्रैड पिट नहीं हो, नहीं थे, अंधी मैं थी और अब मेरी आंखों का वो अंधापन चला गया है। ऑन दैट नोट, अगर आपकी भी जिंदगी में आपके एक्सेस ने सडनली ये शेर व शायरी का रूट अपनाया है, विच इज एक्चुअली रियली जस्ट बॉदरिंग यू, इट्स प्लेन इरिटेटिंग, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हाय शिवानी.
2: हाय
3: शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3. अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज.
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं नहीं,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट,
1: ये पगला.
5: दिस इज समथिंग

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आप ना मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और नॉटी टेक्स्ट लिखते हो जो पब्लिश भी हो जाते हैं और आपके पास एक ब्लॉग भी है उसके बारे में, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड को इसके बारे में कोई इल्म है नहीं, बेचारे को कोई आइडिया नहीं है, ऐसे गंदे काम.
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: गंदे तो नहीं है, बट लाइक आई एम सेइंग दैट योर बॉयफ्रेंड शुड नो द होल ट्रूथ अबाउट यू, राइट? बट अगर आप उसके साथ शेयर नहीं करना चाहते कि आप कैसे इंसान हो, यू कैन डू इट हियर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. टाइम फॉर द कन्फेशन बॉक्स, एज यू जस्ट हर्ड. नाम के स्पेलिंग ROCHIE. तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर अपना नंबर और कन्फेशन भेज दो. एंड आई कॉल यू लाइक आई कॉल माई मिस्ट्री कॉलर. हाई नॉटी गर्ल.
4: हाई रोशी,
2: हाउ आर यू?
4: Very good. How are you?
2: Actually, आप गुड से भी बेटर हो, क्योंकि आपने मुझे जब अपना कन्फेशन भेजा ना, तो आई वॉज लाइक कि ये क्या इंसान है, इसका दिमाग कितना खुराफाती है. लाइक इट्स अ लेजिटिमेटली डर्टी माइंड यू गॉट.
4: अब परेशानी है रोशी, परेशानी का सलूशन तो निकालना पड़ेगा ना.
2: और ऐसे देखो कैसे. तो एक्चुअली ओके ठीक है, तो हुआ क्या? लाइक स्टार्ट से बताइए मोहतरमा, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट.
4: स्टार्ट वहाँ से हुआ कि एक गलत स्वाइप हुआ.
2: हाँ.
4: फिर मैंने सोचा चांस दे देते हैं.
2: हाँ.
4: But clearly not all men deserve a second chance.
2: हाँ, correct.
4: There were too many outbursts, हर बार का निखरे.
2: हाँ.
4: बाहर जाके सीन क्रिएट करना. तो अब विदाउट क्रिएटिंग टू मच ऑफ हैसल, इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से कैसे हटाओ. तो मैंने सोचा एक आइडिया कि मैं अपने इस डेट को एक अपनी US की रिटर्न फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करूंगी.
2: अच्छा.
4: And this was between her and me. So we decided, she sent him a text. She started flirting with him. He was a little interested. So he flirted back, which she of course told me. And after that, she very clearly asked him if he's seeing someone or not. Obviously, we were seeing each other. He would not tell me that he's flirting with someone else. So she gave him an ultimatum that it's either me or this girl that you're dating. He decided to break up with me. Meri friend chali gayi ek hafte baad US aur problem life se bahar.
2: किस तरह के इंसान हो आप कि आपका दिमाग इतना स्मार्ट कैसे चलता है कि लाठी भी टूट जाए और सांप भी ना, व्हाट एम आई सेइंग, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना?
4: लाठी भी ना टूटे.
2: बेब यू आर सो क्लेवर. आपको तो मतलब मैं रोशिफिकेशन के साथ साथ अपना दिल भी देना चाहती हूँ. विल यू बी एक्सेप्टिंग बोथ ऑफ देम?
4: यस एब्सोल्युटली.
2: ले ले बेबी.
0: यू've been roshified.
2: यू आर अमेजिंग. I mean, I don't know, I'm sure you hear that a lot, but you are amazing. आपसे बात करके ना इतना refreshing feel हो रहा है, जैसे मैंने अभी बस नींबू पानी पी लिया हो.
4: इस गर्मी में नींबू पानी जरूरी है.
2: Actually, इस गर्मी में नींबू पानी जरूरी है. And like to let all of your secrets out so that you feel better about life. तो ऐसे ही मेरी mystery caller की तरह अगर आपकी भी जिंदगी में कोई confession है, feel free to hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम छे मिर्ची रोशी. काम छे आपसे प्यार करना. नाम की स्पेलिंग ROCHIE. So do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि जिंदगी में नथिंग वर्क्स लाइक पोएट्री, स्पेशली अगर आप किसी को रोमांस करने की कोशिश कर रहे हो. सो आई नो दिस गाय पिछले 3-4 सालों से जो इटालियन है एंड वेयर इन टच क्योंकि सबके पास व्हाट्सएप होता है. परसों रात को हम दोनों एक जनरल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और ही स्टार्टेड रीडिंग आउट, मतलब उसने मुझे ऑडियो नोट्स भेजे ऑफ इटालियन लव पोएट्री. आई स्वेयर टू गॉड हम इतने अच्छे दोस्त हैं इतने सालों से, लेकिन आज तक मैंने कभी उसे प्यार की उस नज़र से नहीं देखा जितना मैंने उस पोएट्री सुनने के उसे देखा. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ये टिप तो मुझे आपको भी देनी चाहिए. अगर अभी तक आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस नहीं किया है विद रीडिंग आउट पोएट्री या शायरी, इसे ट्राई करके देखो. मेरे हिसाब से ये एक फूल प्रूफ प्लान है. वंस इट वर्क्स फॉर यू, मुझे थैंक यू बोलने के लिए यू कैन फील फ्री टू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. एंड ऑनेस्टली, प्यार होना चाहिए, उसे पाने का कोई भी तरीका वर्क्स, क्योंकि जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड्स.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: द शो स्टार्ट्स इन
3: आजकल एवरीथिंग इन बॉलीवुड इज अबाउट द ओपनिंग वीकेंड, सॉन्ग्स, ट्रेलर्स, डायलॉग्स, इवन इमोशंस, सब कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि फ्राइडे से संडे तक इंटरनेट पे नॉइज बने रहे, लेकिन उसके बाद इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट रिलीज। और इस रेस में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दी है, रिपीट वैल्यू। वो गाने जो आदमी खुद ढूंढ के वापस सुनता था, वो फिल्म्स जिनके सीन्स लोग स्कूल और ऑफिस में रिपीट करते थे, वो डायलॉग्स जो कल्चर का हिस्सा बन जाते थे। आज कंटेंट ज्यादा है लेकिन कनेक्शन कम, लेकिन फिर भी हर हफ्ते इस ओवरलोड में कुछ आवाजें, कुछ फिल्म्स और कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो याद दिलाते हैं कि बॉलीवुड अभी भी सरप्राइज कर सकता है। तो देन The Mirchi Top 20 starts right now. मैं हूँ सुरेन सुंदरम एंड सबसे पहले एक एल्बम जो इस पूरे साल की सबसे ब्रिलियंट एल्बम में से एक है। ना इसमें डांस ट्रैक्स मिलेंगे, ना फिलर सॉन्ग्स, ना वो गाने जिन्हें आप एक बार सुन के भूल जाएं। इस एल्बम पे मेहनत गई है, चांद मेरा दिल, सचिन जिगर की मेहनत। एंड नंबर 20 पर है खासियत बाय राघव चैतन्य और जोनीता गांधी। खत्म होने के बाद भी फिर सुनने का मन ना करे तो मेरा नाम बदल देना।
4: नंबर 20।

नंबर 19 पे रूप दी रानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ कि गाना चार्ट्स पे स्लाइड करके 19 पे पहुंच गया है, 4 स्पॉट्स नीचे। और शायद अगले हफ्ते ये गाना कंप्लीटली आउट भी हो जाए, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ नोस्टैल्जिया का कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, सोल नहीं। आप उन्हें सुनते वक्त कॉन्स्टेंटली ओरिजिनल गाने को याद करते हैं, एंड फिर अचानक नंबर 18 पे एक ऐसा कोलैब एंट्री लेता है जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। विशाल मिश्रा इन एन अनुराग कश्यप फिल्म कॉल्ड बंदर। और ये गाना क्यों मजा आ रहा है यार, क्या स्ट्रेंज हॉन्टिंग ट्रैक है ये। जब पूरी इंडस्ट्री एल्गोरिथम फ्रेंडली हुक्स, ढोल ड्रॉप, स्टेडियम कोरसेस के पीछे भाग रही है, दिस सॉन्ग जस्ट विस्पर्स, बस धीरे से अंदर पहुंच जाता है। नो लाउड पे ऑफ, नो स्क्रीमिंग हुक, बस माहौल, द एटमॉस्फेयर, वो लेट नाइट लोनलीनेस, वो अकेलापन। और विशाल मिश्रा की आवाज, बंदा गा नहीं रहा, बंदा अपने दिल को समझा रहा है, रोका था कब से, संभाला था कब से। द राइटिंग इटसेल्फ फील्स टायर्ड इन अ गुड वे, इट्स एग्जॉस्टेड, जैसे कोई आदमी खुद को कन्विंस करते करते हार गया हो। और प्रोडक्शन भी देखो, मिनिमल पर्कशन, एम्बिएंट सिंथ्स, टाइनी अकूस्टिक गिटार फ्रेजेस जो फ्लोट करते हैं जैसे ख्याल पूरे ना हो, अनफिनिश्ड थॉट्स। ये गाना परफॉर्म नहीं करता, हॉन्ट करता है। एंड सबसे स्मार्ट चॉइस, विशाल नेवर बेल्ट्स द लाइन क्यों मजा आ रहा है, वो उसे आहिस्ते कहता है, लाइक अ मैन एम्बैरस्ड बट ही इज फॉलिंग इन लव अगेन। इट्स ब्यूटीफुल रिस्ट्रेंट एंड इट शॉक्स मी कि अनुराग कश्यप के सिनेमा में ऐसा इमोशनली डैमेज रोमांस पिट हो सकता था। This is purely mood over melody, texture over trend. गाना नंबर 18 इस हफ्ते क्यों मजा आ रहा है, From बंदर। नंबर 18.

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot. Mirchi.
1: इसका बना, उसका बना, सका बना. क्या बना? मुर्गा, मुर्गा. नवीन वाला मुर्गा. Mirchi मुर्गा.
2: हेलो.
3: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार. हेलो.
2: हेलो.
3: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब. इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से. मत करो उसको वहां से. हेलो. हेलो भाई साहब.
2: हाँ जी बोलो.
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन.
2: हाँ जी देते.
3: एक सेकंड होल्ड करना. उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे. मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान. भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ. ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे. ये गिर गया है और इसको उठाना है यार. ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार. कोई
2: कहाँ भिजवाना है?
3: मैं आपको
2: बता दो.
3: नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
2: है? जी उठवा लेंगे उतना ही हम.
3: नहीं नहीं, वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को. हाँ ये आप ये भेज दो, इसको उठवा दो यार. ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है.
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप.
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे. तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए. तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी.
2: भाई साहब क्या उठवाना है?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स. तो आप ऐसे उठाना है इसको.
2: हाँ
3: सामान उठवा.
2: क्या कर रहा
3: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार. आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ. सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है.
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है. हेलो
4: हेलो
2: हेलो.
4: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं. मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था. क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं. हेलो,
2: कहाँ से बोल रहे हैं?
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
0: Surin ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 10.

मामा शुका नंबर 10 पे इस हफ्ते फुल मेडिटेरेनियन केओस लेकर डेब्यू कर रहा है माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2। शाहिद कपूर इज इन फुल चार्मिंग रोग मोड, कृति सैनन वो एफर्टलेस ग्लैमर एनर्जी लेके आ रही हैं, एंड प्रीतम दा वंस अगेन प्रूविंग कि वो हुक बनाना भूले नहीं है। लेकिन इंटरनेट को ऑब्वियसली मेलोडी से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है। अब पूरा सोशल मीडिया इस बात पे लड़ रहा है कि माशुका सपोजिटली एक 32 साल पुराने 32 years ago इटालियन सॉन्ग से इंस्पायर्ड है।

0: और फिर वही ओल्ड कमेंट्स फिर निकल आए, प्रीतम हैज कॉपीड अगेन। देखिए मैं यहाँ प्रीतम दा की साइड पर हूँ। हाँ, उनका पास थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सा चेकर्ड रहा है, नोबडी इज डिनाइंग दैट, लेकिन ये सिचुएशन मुझे थोड़ी अलग लगती है। महमूद कोई रैंडम वोकलिस्ट नहीं है, बंदा ऑफिशियल कोलैबोरेटर है इस गाने पे। एंड भाई नाम महमूद है बट ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज इटालियन। उसने खुद इटालियन पोर्शंस लिखे हैं और उन्हें परफॉर्म किए हैं, तो मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि ये चोरी वाला सिचुएशन है। और एक और बात, हर मेलोडी जो इंडियन कानों को कॉपीड लगती है ना, जरूरी नहीं है कि वो कॉपीड ही हो। What if that melodic phrasing is just culturally Italian? क्योंकि हम Indian listeners automatically assume कर लेते हैं कि unfamiliar melody मतलब lifted melody. And सच में internet को context से ज़्यादा outrage पसंद है. We know it. वैसे इस वक्त number 9 पे सैयारा का title track भी quietly अपना emotional empire build कर रहा है. लेकिन अब charts पे आ रहा है एक और धुरंधर का chapter. And unlike माशूका, ये गाना subtle नहीं बनना चाहता. This one walks in with pure vibe energy. Gaana number 8 is hafte. Main aur tu by Jasmine Sandlars from Dhurandhar, The Revenge.
1: Number 8.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Sureen ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: नंबर पांच पे इस वक्त प्योर बॉलीवुड रोमांस डिस्कोर्स को हाईजैक कर चुका है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर, हमजा और यालीना की लव स्टोरी का वो चैप्टर जहां एवरीथिंग स्टिल फील्स वार्म, इट फील्स सेफ, इट फील्स ब्यूटीफुल। अब तक बिट्रेल्स नहीं आया है, धोखा नहीं आया है, नो एस्पियनेज स्कार्स, बस दो लोग जो स्लोली एक दूसरे की दुनिया बन रहे हैं। एंड ऑनेस्टली धुरंधर ने लव को बहुत फिल्मी तरीके से नहीं, बहुत ह्यूमन तरीके से लिखा, दैट ऑकवर्ड सॉफ्टनेस, द इमोशनल डिपेंडेंस, द कंफर्ट, और फिल्म आगे बढ़ती है और प्यार शादी बन जाती है, फैमिली बन जाती है, एक बच्चा आ जाता है, अंटिल द ट्रूथ डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, कि हमजा सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक इंडियन स्पाई जासूस था और उसे अपना वतन चूज करना पड़ा, इवन ओवर द पीपल ही लव्ड मोस्ट। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं हुई वो था उसका इश्क, और शायद इसलिए धुरंधर 2 का एक गाना आखिरी इश्क मुझे एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग नहीं लगता, ये मुझे क्लोजर लगता है। इफ गहरा हुआ वॉज द फर्स्ट हार्ट बीट, आखिरी इश्क इज द लास्ट ब्रेथ। मैं ना रहा तो क्या हुआ, तेरे पास है इश्क मेरा। यार क्या राइटिंग है। आदित्य धर ने सिर्फ स्पाई थ्रिलर नहीं बनाई, उन्होंने एक लव स्टोरी को एक प्रॉपर इमोशनल एंडिंग दी है। और इस वक्त टेक्निकली चार्ट्स पे अगला गाना तो है अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म भूत बंगला का तू ही दिसदा, विच इज ऑन नंबर 4, लेकिन कुछ मोमेंट्स काउंटडाउन लॉजिक से बड़े होते हैं। एंड आज वी फिनिश हमजा और यालीना की लव स्टोरी प्रॉपरली। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम धुरंधर 2 द रिवेंज बाय द मैन ऑफ द मोमेंट जुबिन नौटियाल एंड शाश्वत सचदेव। ये है आखिरी इश्क।
1: पिक ऑफ द वीक।

के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर थ्री.

0: नंबर दो पे इस वक्त फुल मास हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है वाओ फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है एंड ऑनेस्टली ये मेरे लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग है क्योंकि ये गाना एक महीना बिता चुका है लेकिन शायद फिल्म थिएटर्स में आते ही इसका बज और बड़ा हो गया है और शायद उसका रीजन सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है इमोशन है क्योंकि अगर आपने वरुण धवन का अपने डैड डेविड धवन के साथ वो इंटरव्यू देखा है देन यू नो दैट दिस इज डेविड सर्स लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर यार क्या लेगेसी है इनकी हीरो नंबर वन कूली नंबर वन राजा बाबू पार्टनर बीवी नंबर वन मुझसे शादी करोगी हिंदी सिनेमा की कॉमेडी डीएनए में परमानेंटली लिखी हुई फिल्म्स हैं ये ऑल डायरेक्टेड बाय डेविड धवन लेकिन उस इंटरव्यू में एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था एक बहुत ही ह्यूमन मोमेंट वरुण अपने फादर को लिटरली कन्विंस कर रहे हैं कि अब रेस्ट कर लो हॉलीडेज पे जाओ लाइफ एंजॉय करो लेकिन डेविड सर वो बस अंडा पाव की बात कर रहे हैं स्टार्डम के बाद भी सिंप्लिसिटी नहीं गई और शायद इसलिए उनकी फिल्म्स में वो वार्म्थ वो मिडिल क्लास मैडनेस वो ह्यूमन केओस हमें अब भी दिखता है
1: सी पापा व्हाट वी वांट एज चिल्ड्रन इफ आई कैन टेल यू नियर पीपल और एनी चाइल्ड वांट्स इज दैट इफ यू हैव आपने पैसा कमाया नाम कमाया शोहरत कमाया तो आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप आराम करें बट मेरे माँ बाप बहुत हाइपर है तो मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं उनको थोड़ा सा आई कीप टेलिंग देम ना रिलैक्स आपको हॉलीडे जाना है फर्स्ट क्लास की टिकट कर आपको जहाँ जाना है मैं भेजने के लिए तैयार आपको जो चाहिए दुनिया में मैं देने के लिए तैयार हूँ
2: मुझको भीड़ में छोड़ दो
1: इनको अंडा पाव ही खाना है इनको
2: मैं बड़ा ही वही हुआ मैं जब सांता क्रूज़ ईस्ट में रहता था रात को हम लोग सब वही अंडा पाव ही मिलता था रात को 12 बजे ये वो जो चले गए उधर खा के आ गए पर वो मजा अलग ही था ना एंड अ स्ट्रगल एवरीवन हैज टू डू स्ट्रगल ये बोलते हैं कि पहली शॉट में जो हिट फिल्म दे देता है ना तो उसके आगे की लाइफ खराब हो जाती है
0: हिट फिल्म पहले मिल जाए तो लाइफ खराब हो जाती है डूड व्हाट अ लाइन डेविड सर हैप्पी रिटायरमेंट लेकिन अभी एपिसोड एंड हो रहा है उस फिल्म मेकर के साथ जिसके पास इस वक्त बॉलीवुड का हॉटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है आदित्य धर और धुरंधर का अनस्टॉपेबल स्टॉर्म नंबर वन फॉर अ 15th टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20 है जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची का शरारत नंबर वन

0: और बस इसी के साथ मिर्ची टॉक 20 का ये एपिसोड यही खत्म होता है। देखो, हाइप थी, हार्ट ब्रेक भी था, नॉस्टैल्जिया भी था और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी भी थी। बॉलीवुड हर हफ्ते बदलता है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, एंड दैट इज ग्रेट म्यूजिक, जो इवेंचुअली अपना रास्ता बना ही लेता है। फिर मिलूंगा आपसे किसी और मोड पे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: Only on Mirchi. It's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

क्या ही हद सेंशियस गाना है ये भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और मुझे याद है गाना मैंने शायद टीवी पे ये फिल्म आ रही थी तब देखा सुना था, या चित्रहार में देखा सुना था। और ये जो अगला गाना हम सुन रहे हैं ना, ये भी कोई कम सेंशियस नहीं है, लेकिन ये मैंने पता है कब पहली बार सुना था, इसे मैंने एज ए रीमिक्स सुना था। इस रीमिक्स के वीडियो में थी आयशा टाकिया, शायद आपको याद आ जाए, वो वीडियो जिसमें उन्होंने दो चोटियां बनाई हुई होती हैं और उस गाने में क्लब दिखाते हैं, लिफ्ट भी दिखाते हैं। अब तो याद आ ही गया। ओरिजिनली ये गाना जवानी दीवानी का, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने गाना लिखा, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो मिस्टर गौतम,
4: कौन बोल रहे हैं?
3: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सो आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
4: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
4: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगा?
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
4: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको
3: भेज। वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
4: कोंडा में कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
4: सुन ले बात, मेरी बात सुन, पहले बात सुन।
3: हाँ सर।
4: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा है।
3: सर बोलिए,
4: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
3: जी सर।
4: और जिसने भी ये नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ करनल सिंह, ओ करनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

1985 की फिल्म गुलामी जब बन रही थी तो उसके प्रोड्यूसर को कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक्चुअली काफी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। तब फिल्म के स्टार्स में से जो सबसे पहले सामने आए, जिन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी फीस नहीं लूंगा इस फिल्म के लिए, वो थे बड़े दिल वाले काइंड हार्टेड धर्मेंद्र जी। और फिल्म की बाकी स्टार कास्ट को जब पता चला कि धर्मेंद्र जी ऐसा जेस्चर कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी फीस लेने से मना कर दिया। तो इसी फिल्म का ये ब्यूटीफुल गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: हेमा मालिनी की उनकी खुद की फेवरेट फिल्म्स कौन सी रही हैं? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: वैसे दुल्हन, किनारा, खुशबू, देन सीता गीता, इट्स अ डिफरेंट रोल, लाल पत्थर।
0: वैसे हेमा जी के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे एक्सपोज करने वाली फिल्में या ऐसे सेंसुअस रोल्स वो नहीं करती थी, जिसकी वजह उनको ये सब कंफर्टेबल नहीं लगता था, और उनकी मम्मा भी ये सब अलाउ नहीं करती थी जो उनके करियर के काफी डिसीजंस लेती थी। वैसे हेमा जी से एक बार ये भी पूछा गया था कि उनकी मम्मा जब हमेशा उनके साथ फिल्मों के सेट्स पर रहती थी तो उनके सामने क्या रोमांटिक सीन्स करने में वो अनकंफर्टेबल होती थी।
1: हमारे परिवार के कोई भी सदस्य इस किस्म के सीन करने के समय सामने बैठे हों कैमरा के सामने, तो आर्टिस्ट को तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। ये माँ हो या भाई हो या कोई भी हमारे घर के सदस्य, इट इज़ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन टू डू योर रोमांटिक सीन विद अ मैन इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स।
0: चलिए इसी बात पे गाना सुनते हैं, जिसका पिक्चराइजेशन शायद इतना सेंसुअस नहीं था, लेकिन ये गाना एक अलग ही तरह का सेंसुअस और रोमांटिक है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

1983 की फिल्म सदमा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसका जो क्लासिक गाना है ए जिंदगी गले लगा ले, ये गाना सुरेश वाडकर जी की आवाज में है, गुलजार साहब ने लिखा है, इले राजा का कंपोज किया हुआ। और इले राजा जी जब इसे कंपोज कर रहे थे इस फिल्म में, तो उनके म्यूजिक ग्रुप में कीबोर्ड प्लेयर पता है कौन थे? A.R. रहमान। किसने सोचा था कि उस फिल्म के कंपोजर्स के ग्रुप में जो कीबोर्ड प्लेयर लड़का है वो और इस फिल्म के लिरिसिस्ट गुलजार साहब मिलके कुछ 25 साल बाद एक आइकॉनिक सॉन्ग बनाएंगे जिसे ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। स्लमडॉग मिलियनेयर का जय हो भाई, ऐसी है जिंदगी, कभी लात मार देती है कभी गले लगा लेती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नसीब फिल्म का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और अपेरेंटली अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की साथ में लास्ट फिल्म थी। ऐसा सुनने में आता था कि अमिताभ बच्चन साहब शत्रुघ्न सिन्हा साहब की सेट्स पे देर से आने की आदत से परेशान थे, और यहाँ अपने बच्चन साहब तो एकदम परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन वाले हैं। ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो उनसे नहीं हो पा रहा था बिकॉज शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत लेट आते थे सेट्स पे, तो उन्होंने उनके साथ काम करना फिर बंद कर दिया। एक्चुअली आई थिंक ये 1981 की फिल्म है नसीब, उसके बाद इनकी कोई फिल्म आई भी नहीं साथ में। कोई पहले से बन रही हो, लेट रिलीज हुई हो, वो अलग बात है आई थिंक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Navid wala murga. Mirchi murga.
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
4: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद ही कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो,
3: नहीं नहीं
4: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शट अप, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
2: इट्स पटाक।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

भाई लता मंगेशकर जी ने जब मैंने प्यार किया फिल्म के गाने रिकॉर्ड किए थे तो कैसे किए थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप कहेंगे स्टूडियो में गा के माइक के सामने किए होंगे। ऑफ कोर्स वैसे किए थे, लेकिन उन्होंने ना उस फिल्म के सारे गाने एक ही दिन में रिकॉर्ड कर दिए थे, क्योंकि फिर उनको अब्रॉड टूर पे जाना था, कॉन्सर्ट, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स वगैरह पे। और आप सोचिए, ये फिल्म आई थी 1989 में और उस टाइम लता मंगेशकर जी 60 साल की थी। क्या उनका स्टैमिना, उनकी एनर्जी रही होगी। और उसके बाद उन्होंने ट्रैवल भी किया अगले दिन ये सारी रिकॉर्डिंग्स करने के बाद। ऐसे ही होते हैं फिर कर्मठ लोग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

Radio Mirchi, New York. It's hot. Purani Jeans. With Jaru. Only on

0: नहीं।
1: देव आनंद साहब का असली नाम क्या था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और एक बार एक इंटरव्यू में इस पर खुद उन्होंने क्लैरिटी दी थी, सुनिए।
2: नाम है धर्मदेव, मैंने धर्म को उड़ा दिया क्योंकि मुझे लगा कि धर्म बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। Yes. देव रखा और देव के साथ आनंद जोड़ दिया, इसलिए आनंद मेरा सरनेम है, और इसलिए मैं धर्मदेव आनंद से देव आनंद।
1: और अर्ली 40s जब वो लाहौर में ग्रेजुएशन करने के बाद बॉम्बे आ गए थे एक्टर बनने के लिए, उन दिनों को याद करते हुए सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
3: मैं लाहौर गम कॉलेज में था, मैंने बी ऑनर्स किए थे और मैं एमए जाना चाहता था। मेरे पिताजी की उस वक्त माली हालत ठीक नहीं थी, तो मैंने थर्ड क्लास कंपार्टमेंट की टिकट पकड़ी और मैं किसी को बम्बई में नहीं जानता, किसी को नहीं जानता था। मैं बॉम्बे सेंट्रल में उतरा, मैं 2 साल का स्ट्रगल किया और 2 साल के स्ट्रगल के बाद जब मुझे ब्रेक मिला हम एक हैं में, तो हम एक हैं का वो दौर था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी, और उसके बाद मैंने हिंदुस्तान का आजादी का ना देखा, सारे फेजेस देखे हैं।
1: कई बार मुझे लगता है कुछ पुराने एक्टर्स में एक अलग तरह की संवेदनशीलता इसीलिए होती थी बिकॉज इन्होंने इतने बड़े बड़े लाइफ इवेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल, पार्टीशन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

प्रोफेसर फिल्म का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में शमी कपूर के ऑपोजिट थी एक्ट्रेस कल्पना। इनका पूरा नाम कल्पना मोहन था, एक्चुअली इनका रियल नेम अर्चना मोहन था और ये फ्रीडम फाइटर अवनी मोहन की डॉटर थी। अवनी मोहन एक पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्टेड थे और कल्पना जी बहुत अच्छी कथक डांसर भी थी। और कई बार ऐसा होता था कि राष्ट्रपति भवन में जब बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाता था बाहर के देशों से भी, तो जब कोई ऐसा कथक परफॉर्मेंस होता था तो उनको इनवाइट भी किया जाता था। काफी फिल्मों में थी ये, प्यार किए जा फिल्म में थी एंड तीन देवियां फिल्म में वो जो गाना है अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, उस गाने में जो एक्ट्रेस हैं वो कल्पना जी ही तो हैं देवानंद साहब के साथ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू.

1968 की फिल्म शिकार का सुपरहिट गाना पर्दे में रहने दो। इनफैक्ट इस फिल्म के और कोई गाने याद भी नहीं है, यही गाना इकलौता है जो याद रहता है, जो सुपरहिट हुआ था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये गाना जब फिल्म के ट्रायल शो में आशा पारेख जी ने देखा ना, तो उन्होंने ऐसी डिमांड की कि इस गाने को फिल्म से हटा दिया जाए। ऐसा सुनने में आता है कि काफी लोगों ने उनके ऐसे कान भर दिए थे कि ये गाना अश्लील है। इनफैक्ट ये भी सुनने में आता है कि लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाने से मना कर दिया था क्योंकि उनको भी ये गाना अश्लील लगा था। बताइए कितने सीधे लोग थे उस टाइम के, ऐसे ऐसे गाने उनको अश्लील लगते थे, आज तो उनको क्या ही लगता होगा। खैर, काफी बातचीत, डिस्कशन, आर्गुमेंट के बाद फाइनली ये गाना फिल्म में रखा गया, जिससे आशा पारेख जी थोड़ी तब नाराज भी हो गई थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई, गाना सुपर हिट हो गया, इस गाने के लिए आशा भोसले जी को उस साल बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, तब सारी नाराजगी दूर हो गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना,
3: बाना।
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
4: हेलो
5: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
4: हाँ जी बोलो।
5: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
4: हाँ जी देते।
5: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार। कोई
4: कहाँ भिजवाना है
5: मैं आपको
4: बता दो।
5: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
4: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
5: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
4: किसको जी?
5: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
4: क्या गिर गया?
5: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
4: भाई साहब क्या उठवाना है?
5: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
4: हाँ
5: सामान उठवा,
4: क्या कर रहा है?
5: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
4: उठवाना है।
5: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
6: हेलो
4: हेलो
6: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
4: कहाँ से बोल रहे?
6: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: Pirani Jeans with Charu only.

0: हटा दो।
1: प्रेम चोपड़ा साहब हिंदी मीडियम स्कूल के पढ़े हुए, और जब वो कॉलेज पहुंचे तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या मिली? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको सबसे बड़ी दिक्कत जो फेस करनी पड़ी वो थी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे तो फटर फटर अंग्रेजी बोले, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। सुनिए इस सब से प्रेम चोपड़ा साहब को क्या रियलाइज हुआ, एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था।
2: तुमको देख के मैं बड़ा ताजुब करता था, यार कितने कॉन्फिडेंस है इनमें और हम कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तो मैं चाहता था उनकी तरह बनूं। तो फिर मैंने ड्रामा में कोशिश की काम करने की, तो मुझे मिला एक ड्रामा। दूसरी तीसरी दफा जब इंग्लिश में प्ले मिला तो मर्चेंट ऑफ वेनिस शाइलॉक का रोल मुझे दिया गया, जो सेंट्रल रोल था, वो बड़ा लोगों को पसंद आया। तो मैंने आके अपने वालिद को, वालिद साहब को कहा कि देखिए मैं ये करना चाहता हूँ ट्राई। कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, ये बड़ी इनसिक्योर प्रोफेशन है, तुम भी अब जैसे IAS वगैरह कुछ करो या कुछ अकाउंट्स ऑफिसर बन जाओ, उसमें मुझे ही करना चाहिए रेगुलर ऑफिसर। तो मैंने कहा कोशिश तो मैंने ज़रूर करूँगा। अरे कहते हैं भाई ये बड़ा गड़बड़ है प्रोफेशन, क्या करोगे तुम? तो और मैं तुम्हें पैसे नहीं भेज सकूंगा वहाँ, ये स्वच्छ सोचना, आई हैव लार्ज फैमिली एंड आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो मैंने कहा नहीं मैं जाके कोशिश करता हूँ, दो महीने का खर्चा लेके मैं चला गया।
1: चले तो गए, लेकिन बॉम्बे पहुँच के उनका सफर इतना आसान नहीं था। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: कई लोगों के आइडल गुलजार साहब के आइडल रवींद्रनाथ टैगोर जी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन टैगोर जी का लिटरेचर गुलजार साहब की लाइफ में कैसे आया, लेकिन उससे पहले किस तरह की किताबें वो पढ़ते थे, सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में गुलजार साहब ने क्या शेयर किया था।
1: टू स्टार्ट विद बड़ी जासूसी नॉवल पढ़ा, थ्रिलर्स, तलिस्मी, छुराव, बहराम, डाकू। वो एक लाइब्रेरी थी छोटी सी, पार्टीशन हुआ था, खोखे बना लिए थे रिफ्यूजीज ने ले आके। अखबार भी बेचते थे, किताबें भी देते थे, किराए पर भी देते थे, और हफ्ते में चार आना और किताबें जितनी चाहो पढ़ लो। यही उनका अंदाजा था, भाई एक किताब पढ़ लेगा, दो पढ़ लेगा, और क्या। और मैं अब जासूसी नॉवेल का तो ये चस्का होता है कि जब तक क्लाइमेक्स ना मालूम आप छोड़ते नहीं, और मैं रात भर में उसको खत्म कर लेता था, अगले दिन फिर पहुंच जाता था। तो तंग आ गया वो आदमी मुझसे, घाटे वाली बात हो गई ना। तो उसने यही कहा कि चारण में कितनी किताबें दूंगा भाई मैं तुम्हें, तो नहीं। और ये ऊपर के शेल्फ से उसने एक किताब निकाली और ये ले जाओ, और नहीं है किताबें भी। That man didn't know कि उस एक वक्त में जब वो किताब निकाल रहा था वो मेरी जिंदगी का रास्ता बदल रहा है। वो किताब उसने दी थी, उसका नाम था गार्डनर बाय टैगोर, नज्मों का ट्रांसलेशन था, पहली नज्म थी माली, बस वो किताब लग गई। That changed my total pattern of reading and picking up books and literature, जिसे कह सकते हैं आप। That became my passion.
0: Celebrating गुलजार साहब, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। नफरत

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

ये पत्थर और मोम के जिक्र से बशीर बद्र साहब की ये गजल याद आ गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। महबूब का घर हो या बुजुर्गों की जमीने, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: होली
1: ओ नखरे वाली
0: दूंगी मैं गाली।

0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida la burga. Energy, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
2: नहीं
3: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. La vieta la burka. Milchi, burka.
2: Hello.
3: हेलो मिस्टर गौतम,
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाते हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ, सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है? सर नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: सर कुछ गाके सुनाएगा?
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
3: वही सर, ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कौन से गाने हैं
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तने डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया।
2: मैं पागल है क्या?
3: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
2: सुन ले बात सुन पहले। और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: सर। बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: और सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।
2: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर आप एक मैनेजर हैं और कंपनी का कोई रूल आपको सही नहीं लगता, तो ऐसे वक्त में क्या स्टैंड लेना चाहिए? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कभी कभी क्या होता है कि जिंदगी में लेट्स से आप एक ऐसे मकाम पर हैं या कुछ ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, अगर आप एक मैनेजर हैं और कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और मैनेजमेंट जो है वो आपको कहते हैं कि कुछ नए रूल्स आ गए या आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, और वो आपको लगता है कि ज्यादातर जो काम कर रहे हैं उनके लिए सही नहीं है। ऐसे केस में जहां आपको पता है आप मैनेजमेंट से लड़ नहीं सकते और आपको ये भी पता है कि जिन लोगों के लिए रूल बना है उनके लिए सही नहीं है, इस कश्मकश से कैसे बाहर आएंगे आप?
4: सी, जब भी कोई चैलेंज होता है, कोई भी सिचुएशन होती है, चाहे वो वर्क प्लेस पर है चाहे वो घर पर है, हमें उसके लिए कोई ना कोई स्टेप तो उठाना पड़ेगा ना। हम कोई पुरुषार्थ तो करेंगे, एफर्ट तो करेंगे
3: जी,
4: पर मैं हमेशा कहती हूँ कि पहला स्टेप ये होना चाहिए कि वो चीज आपको परेशान नहीं करे
3: जी।
4: इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं, हम करेंगे।
3: अतः आपको दिमागी तौर पे परेशान नहीं होना चाहिए
4: क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा आप कुछ भी और करेंगे तो।
3: हाँ, कि ये क्या बात हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा ना सोचें।
4: अगर आपको जाकर के मैनेजमेंट से बात भी करनी है ना, उस कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन का भी रिजल्ट तभी आएगा जब आप बहुत स्टेबिलिटी से वो करेंगे
3: जी,
4: असर्टिवली करेंगे। ये बहुत जरूरी है। हम क्या सोचते हैं कि बस हमें कुछ करना है, लेकिन कुछ करने से पहले आपकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपना ध्यान रखना।
3: बिल्कुल,
4: आप किस वाइब्रेशन के साथ जा रहे हैं। देखो, आध्यात्मिकता में बहुत सुंदर कहते हैं आप वृत्ति से वृत्ति बदल सकते हैं
3: जी, जी,
4: आप दृष्टि से दृष्टि बदल सकते हैं
3: जी।
4: जो बोल करके नहीं हो रहा वो आप सोच से भी किसी की सोच को परिवर्तन कर सकते हैं। आप बहुत कुछ साइलेंस में कर सकते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: प्रोफेशनल लाइफ में सिचुएशंस के हिसाब से अपना अप्रोच बदलना कितना जरूरी है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैनेजमेंट ने कोई ऐसे चेंजेस और रूल्स निकाले हैं जो आपको ठीक नहीं लगता। अब एक हो सकता है कि आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएं उस चीज़ को सुनकर, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये नीचे वालों के बारे में नहीं, हम सोचते हैं, बहुत एजिटेट हो जाते हैं। फिर हम जब बात करने जाते हैं तो हमारा तरीका भी बड़ा अग्रेसिव होता है। जब हम अग्रेसिव होते हैं तो सामने वाला हमारी बात को इतना
4: महत्व नहीं देता
3: ना, क्योंकि आप बात को तो महत्व बाद में देंगे, आपका जो अग्रेशन है वो उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है।
4: बिल्कुल,
3: आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्टफुली बात करें तो वो सुनेंगे भी। तो पहली चीज है कि हम अपना ध्यान रखें, दूसरी बात है हम जरूर बात करें। बहुत करके हम सारी दुनिया से बात करेंगे, कैफे में, कैंटीन में बात करेंगे, जूनियर से बात करेंगे, लेकिन राइट व्यक्ति से जाकर के बात नहीं करेंगे। मन में कहेंगे वो समझेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी आई हैव सीन की जो अथॉरिटी पर होते हैं, देयर समटाइम्स सीइंग थिंग्स ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन। किसी ने वो दूसरा पर्सपेक्टिव उनको दिया ही नहीं होता। और उनको भी वो दूसरा पर्सपेक्टिव क्लिक नहीं हुआ होता, वो हमेशा इतने क्लोज्ड नहीं होते हैं। कभी कभी वो इमीडिएटली भी अगर उस चीज को अग्री नहीं करेंगे
4: तो बाद में शायद थोड़े दिनों बाद सोच समझ के वो शायद कर ले।
3: हो सकता है जिस समय आप अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं आपसे आर्ग्यू भी करें, और अपने पहले पर्सपेक्टिव जिससे वो अटैच्ड है आपको कन्विंस करने की भी कोशिश करें, लेकिन फिर भी जो आपने बात कही है ना बहुत ही स्टेबिलिटी और असर्टिवनेस के साथ, उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Raj Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: काम रहकर अपने वर्क स्पेस को पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: उसके बाद भी अगर वो चीज आपके अनुसार नहीं होती है, देन ऑल्सो यू हैव चॉइस। वन इज जो आपने कहा कि नौकरी छोड़ दे, कई लोग छोड़ देते हैं, उनको नहीं कंफर्टेबल होता, वो सफोकेट हो जाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं ठीक है मैंने अपना पूरा ट्राई किया, अगर मेरे पास पावर होगी तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं भी इस समय पर इस सिस्टम का पार्ट हूँ, मुझे मेरा रोल प्ले करना है। उनको भी पता है ये चीज सिस्टम से आ रही है,
4: सही बात।
3: उनको भी ये चीज पता है ना कि ये नियम मैंने तो नहीं बनाया, ये पॉलिसी मैंने तो नहीं बनाई, मैं भी तो इस सिस्टम का एक हिस्सा हूँ। आ तो ये टॉप लेवल से रही है एंड आई एम ओनली इम्प्लीमेंटिंग इट, तो वो सामने वाला भी समझता है कि इनकी हमारे प्रति शुभ भावना है, पर इनकी भी लिमिटेड पावर है। सो देर आर वेज टू डील विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन अ वेरी काम मैनर, पर ज्यादातर हम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो जितना थोड़ा बहुत भी आप चेंज लेकर आ सकते थे ना, फॉर एग्जाम्पल इसमें थोड़ा सा चेंज इतना तो हो सकता है कि आपने ट्राई किया, वो नहीं माने, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट भी किया, पर आपकी शुभ भावना भी सामने वाले को एम्पावर करती है। आपकी प्योर जो भावना है ना, वो भी कहती है अच्छा ठीक है आपने तो ट्राई किया ना, अभी क्या कर सकते हैं, अब जो होगा अच्छा ही होगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब वर्क प्लेस पर आपके प्रिंसिपल्स और सिचुएशंस क्लैश करें तो मेंटल पीस को कैसे चूज करें, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कुछ आपको ऐसी चीजें करने को कहा जाता है जिससे आप अग्री नहीं करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेकिन ना केवल आप अग्री नहीं करते, कभी कभी वो आपके प्रिंसिपल्स के भी खिलाफ होता है, तो उस समय क्या करें? जब आप बोलते हैं भैया मैं अग्री नहीं करता, ये जनरल गुड के लिए भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी छोड़ना इतना आसान डिसीजन नहीं होता बिकॉज और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स के भी खिलाफ हैं, तो कौन सी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करूं और कौन सी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ये कैसे तय करें?
4: वो आपकी चॉइस होगी।
3: अच्छा,
4: वो कोई भी नहीं बता सकता। सी फॉर सम पीपल लाइक आई सेड, वो अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा सफोकेट कर देता है।
3: बिल्कुल करता है
4: वो, उनको उनकी मेंटल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर, रिलेशनशिप पे तोड़ लेता है। वो कहते हैं मैं बिना नौकरी के चला सकता हूँ,
3: लेकिन ये
4: मैं
3: नहीं
4: कम पे वाली नौकरी पे चला सकता हूँ जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं,
3: वो नहीं,
4: या मेरे पास कुछ महीने नहीं होगी, मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे फिर से अपनी इमेज बनानी पड़ेगी, मुझे फिर से अपने को प्रूव करना पड़ेगा, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ पर मैं ये नहीं कर सकता। और कई कहते हैं भाई आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट, मैंने यहाँ ट्राई कर लिया जितना मैं कर सकता था, मैंने सिस्टम से बात भी करी, उनको कन्विंस करने की भी कोशिश करी, पर अभी वो नहीं मान रहे हैं, तो मैं होता तो नहीं करता, लेकिन अभी आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो फिर बहुत शुभ भावना से अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है वो चीज, तो फिर हम वो चीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि जब ले ऑफ करना होता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है, अपनी टीम के किसी मेंबर को कहना उनको बहुत मुश्किल होता है। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दो, नोटिस पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दो, लेकिन अब ये तो हर ही कंपनी में हो रहा है। आप उस समय कहें कि ये बिल्कुल ही मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे हम लॉसेस में जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो भी तो अपनी रीति से गलत नहीं है, वो कहेंगे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, हम लॉसेस में जा रहे हैं, हमें ये करना पड़ेगा। आप कुछ बेटर तरीका निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो चीज़ करना है तो आप सोचें आप कितना उसको और अच्छे से कर सकते हैं, कंपैशनेटली कर सकते हैं कि सामने वाले को उस चीज़ का एक धक्का भी नहीं लगे और उनको सपोर्ट भी मिले कि वो आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। बट इट इज़ गोइंग टू बी एन इंडिविजुअल्स चॉइस, उनकी कितनी स्ट्रेंथ है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: भव स्व सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणपतये नमः।
1: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अपना टाइम आएगा।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: लेऑफ जैसे मुश्किल वक्त में मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को इमोशनली स्टेबल कैसे रहना चाहिए, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि अगर आप एक ऐसे मैनेजर हैं जिनको किसी को लेऑफ करना है, और सबसे पहले आप मैनेजमेंट से बात करते हैं, लेट्स से नोटिस पीरियड के बारे में। मैनेजमेंट ने कहा भाई एक महीना है, आप कहते हैं फेयर नहीं है, 6 महीने तो मिनिमम होना चाहिए, और किसी तरह आपने मैनेजमेंट को कन्विंस भी कर लिया, ना 1 महीना हुआ ना 6 महीने हुआ, आपने 3 महीना फिगर आउट कर लिया, तो आपको लगता है चलो हम जीत गए। अब आप जाके एम्प्लॉय के पास जाते हैं, उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं, और फिर एम्प्लॉय कहता है तो शर्म नहीं आ रही है, तुमको लगता है 3 महीने में नौकरी मिल जाएगी, और आप धक्के में रहते हैं कि एक तरफ कंपनी 1 महीना बोल रही थी जो इसको पता नहीं है, और मैंने उसको खींच तान के 3 महीने कराया, मुझे बहुत जद्दोजहद लगी करने में, और सामने से मुझे उल्टा, मतलब मैं कंपनी की भी थप्पड़ खा रहा हूँ, एम्प्लॉय भी थप्पड़ खा रहा हूँ, तो मैनेजर को कभी कभी लगता है ये चल क्या रहा है, ऐसे केस में क्या करना चाहिए।
4: सी, आपने जितनी प्रेपरेशन करी ना उसमें ये प्रेपरेशन छोड़ दी थी।
3: कौन सी वाली?
4: उसका रिएक्शन क्या होगा।
3: हाँ,
4: आपने जो किया वो जरूरी था और बहुत अच्छा था।
3: हाँ।
4: आपने थप्पड़ नहीं खाया, आप अपने प्रिंसिपल्स पर रह करके, अगर हम इससे बाहर चले जाए ना कि हम कुछ करें और उसके बाद सामने वाले को उस चीज के लिए हमें थैंक्स कहना चाहिए या कुछ वैलिडेशन देना चाहिए, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर हम कुछ करते हैं और फिर हमें लगता है कि सामने वाला उस चीज को अक्नॉलेज करेगा। पर आप एक बार ही सोच करके देखें, ये प्रेपरेशन भी अगर आप कर लेते कि जिसको आप ले ऑफ करने जा रहे हैं
3: जी,
4: उसके लिए 3 महीने के, आप 3 साल भी कहते तो भी उसको एक बार तो धक्का लगना ही था।
3: बिल्कुल,
4: आपके साथ तो आप अपने ऊपर रख करके देख लें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी रोजी रोटी उस पर चल रही है। तो वो व्यक्ति जो एक बार ही रिएक्ट करता है वो डर से करता है, वो इनसिक्योरिटी से करता है। लेकिन अगर हमने ये प्रेपरेशन कर ली होती कि मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मैंने भले अपनी रीति से हर प्रकार की कोशिश कर ली, तो भी एक बारी तो वो इमोशनली रिएक्ट करेगा ही, एंड आई हैव टू बी पेशेंट, आई हैव टू बी काम एट दैट टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको वो बात स्वीकार हो जाएंगे।
3: उसका गिल्ट लेके ना चलें कि उसने, सामने वाले ने क्या कह दिया मुझे।
4: पहले तो गिल्ट होना ही नहीं चाहिए। आपने मिस्टेक भी करी ना तो भी 1 सेकंड का गिल्ट, फिर रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर ऐसे हम गिल्ट करते रहे तो हम कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक डॉक्टर है, वो अपनी सारी जान लगा देता है किसी पेशेंट को बचाने में, उसके बाद भी अगर वो न बचा पाए और वो गिल्ट में चला जाए तो वो कोई उसकी मिस्टेक तो नहीं है ना,
3: तो वो अगला सर्जरी नहीं कर पाएगा,
4: बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट फिर दूसरे को समझाना पड़ता है कि आप भगवान तो नहीं है, आपने अपना बेस्ट दिया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, चाहे वो हम पेशेंट की बात करें या आपके सामने एक एम्प्लॉय बैठा है, आप ये नहीं भूले कि हर एक अपना कर्मा भी लेकर के आता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची 89.4।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: प्रोफेशनल लाइफ के बुरे वक्त में खुद को टूटने से कैसे बचाएं? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: समझो उनके लिए कहने में आएगा कि बुरा वक्त है, वो भी हर एक का अपना अपना उतार चढ़ाव है। आप हेल्प कर सकते हैं, आप किसी के भाग्य से नहीं लड़ सकते। अगर उसको इससे अच्छा कुछ मिलना है या उसको कोई तकलीफ सहन करनी है, जिससे वो, कितने लोग इमोशनली ग्रो करते हैं जब उनके सामने कोई ना कोई चैलेंज आता है, वो भी उनके लिए एक्सपीरियंस बन जाता है। उनकी लाइफ में उनको किस चीज की जरूरत है वो आपको नहीं पता है।
4: बिल्कुल सही।
3: उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने हैं और उससे उन्होंने कौन से लेसन्स लर्न करने हैं और कौन सा फेथ डेवलप करना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम अपना पार्ट अच्छे से बजाते हैं एंड देन वी डोंट गो इन गिल्ट एंड वी टेल आवरसेल्व्स हमने अपना बेस्ट किया, बाकी जो उसके भाग्य का है, जो उसके नसीब का है, वो उसको मिलना ही है, यहाँ से नहीं तो कहीं और से मिलेगा।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

भारत वर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस घोलती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा माँ का धरती पर

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूपी

0: जी, इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है।

शाम कन्हाई, ले जाओ इसको घर। राधे ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर।

धोको यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर श्रेया, मोहम्मद मैंगलोर से लिखते हैं कि ईगो और जलन से कैसे बचें और दूसरों की सक्सेस को अपनी सक्सेस जैसे कैसे सेलिब्रेट करें और कैसे महसूस करें कि हम भी उसकी सक्सेस में इंक्लूडेड है। बहुत अच्छा सवाल है।
3: जलन कब होती है? जब हम कंपेयर करते हैं।
2: जी,
3: कंपैरिजन, अगर हमें ये समझ जाए कि दो सोल्स एक डिफरेंट जर्नी पर है, मेरे कर्म से मेरा भाग्य, उनके कर्म से उनका भाग्य, तो हमें किसी की भी सफलता को देख करके जेलसी नहीं होगी। वी आर ऑन अ डिफरेंट आर ओन इंडिविजुअल जर्नी। जलन कब होती है? जब मुझे लगता है शायद उसने मेरा क्रेडिट ले लिया, शायद ये मुझे मिलना था तो उसको मिल गया। समवेयर वो इनसिक्योरिटी और जेलसी सेट इन होने लग जाती है। जेलसी का रूट कॉज कंपैरिजन है। और कंपैरिजन में आप क्या करते हैं कि उसको मिला मुझे नहीं मिला। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि आपको वो मिलेगा जो आपके कर्म है, उनको वो मिलेगा जो उनके कर्म है, तो आप मन किसी की सफलता को देखकर जेलस होते ही नहीं हो। आपको पता है कि उनके कर्म का भाग्य उनके सामने लौट कर आया है। जो हम कई बार कहते हैं कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा है वो तुझे मिलेगा और कोई छीन नहीं पाया है। सो कंपैरिजन इज दैट ओल्ड एज डीमन दैट रॉब्स यू ऑफ हैप्पीनेस।
2: क्या बात है,
3: आपकी खुशी को वो खत्म कर देता है।
2: तो कंपैरिजन मत करो मोहम्मद, और खुश रहो, और अपने दोस्तों की सक्सेस में आप इंक्लूडेड भी फील करेंगे और सेलिब्रेट करने का मन भी करेगा।
3: देखिए, एक चीज ये भी समझना है कि अगर हम किसी की सफलता से जलते हैं तो हम सफलता से जल रहे हैं।
2: हाँ,
3: वो हमारे पास कभी नहीं आएगी।
2: सही बात है।
3: अगर आप औरों की सफलता में खुश होते हैं,
2: क्या बात है,
3: तो वो सफलता आपके घर में भी दस्तक देगी।
2: बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
3: एंड जेन्युइनली फ्रॉम इनसाइड, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो आप उसकी सफलता में, उसके आगे बढ़ने में खुश होंगे, उसको दुआएं देंगे, तो वही एनर्जी आप तक लौट करके आए।
2: तो सफलता की जो फसल है, सफल की जो फसल है, वो तुम आज बो। अगर आप सफलता से ही ईर्ष्या करने लगोगे तो सफलता आपके घर पे कभी दस्तक नहीं देगी।
3: सफलता का मतलब भी क्या है, हिंदी में बहुत सुंदर है, इंग्लिश में हम कहते हैं सक्सेस।

0: जो कुछ मिला है वो उसको सफल करता है, चाहे वो उसका समय है, टैलेंट है, स्किल है, धन है। जब आप उसको दूसरे के बेनिफिट के लिए लगाते हो, उससे किसी का कल्याण होता है, जिसको हम कहेंगे दानी है, महादानी है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, सच्चे अर्थों में वो सफल है। किसी के पास बहुत है लेकिन मतलब वो सफल, उसको सफल करना नहीं आता, उसको लगाना ही नहीं आता। क्योंकि जब हम सफल करते हैं तो वो हमारा भी बढ़ता है। आप कभी भी नोट करना, फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज भी अच्छे से बनानी आती है, सफल करने का मतलब है आप किसी और को सिखाते हो,
1: सही बात है,
0: तो वो स्किल आपकी भी बढ़ेगी। और उनको आपने सिखाया तो उनसे दुआएं मिलेंगी, तो उनकी दुआएं और आपकी जो स्किल बढ़ रही है वो आपको और सफल करती जाएंगी।
1: क्या बात, बहुत बढ़िया।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: été.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, मिलन गांधीनगर गुजरात से लिखते हैं कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम पैसा, नौकरी और दुनियावी चीजों में इतने उलझ गए हैं कि असली जीवन जो शांति, करुणा, सही कर्म और परमात्मा से जुड़ने के लिए है, उससे दूर हो गए हैं। हम समझते हैं कि ध्यान और आध्यात्मिक जीवन जरूरी है, लेकिन व्यस्त जीवन शैली में ये संभव नहीं हो पाता। कृपया बताएं कि इसका समाधान क्या है।
3: हमने धर्म और कर्म को अलग कर दिया है।
2: जी,
3: वो अलग नहीं है। इसीलिए जो शब्द अभी यूज होता है, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी।
2: जी,
3: क्योंकि वो चीज अलग है ही नहीं ना। हमें लगता है धर्म, हमने आधा घंटा पूजा पाठ करी, कोई सत्संग किया, वो धर्म है। फिर दिन भर में हम बहुत व्यस्त हैं, हमें कर्म करना है, हमें पैसा कमाना है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। पर वो कर्म हम कई बार गलत तरीकों से भी कर रहे होते हैं।
2: अच्छा,
3: किसी का नुकसान भी कर दिया, किसी को डांट भी दिया, किसी के प्रति क्रिटिकल भी हो गए, निंदा भी करी, नीचे गिराया, बहुत कुछ हमने किया, तो वो हमारा जो कौन से खाते में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, कौन से
2: लॉस में जाएगा।
3: तो वो धर्म को कर्म में लेकर ही तो आना था। आज वो कर्म क्या है, इसलिए कर्म नहीं कहना चाहिए, कर्म योग कहना चाहिए। सो एनीथिंग व्हिच इज डन राइट, वो पुण्य के खाते में जाएगा। तो धर्म आपको क्या सिखा रहा है, आप दिन भर कर्म करो, लेकिन ऐसा कर्म करो जो सबका भला हो, आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, और आप धन के साथ साथ दुआएं भी कमाएं। देखिए, धन बहुत जरूरी है, लेकिन किसके लिए, वस्तुओं के लिए। अब बिना धन के लिए तो आप कोई चीजें तो नहीं आ सकते, लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ तक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब नोट बंदी हुई, तो जो नोट बंद हो गए, अभी उसका आपको ट्रक भर के भी दे दे,
2: ये लीजिए,
3: क्या फायदा। 1,000 का नोट है, आप उसको ट्रक भर के भी दे दे, क्या फायदा है। क्योंकि उस मनी की जो वैल्यू है, इफ इट कैन हेल्प यू बाय अ कमोडिटी, वो वस्तु के लिए है। पर उसको वस्तु तक रखे ना,
2: सही बात,
3: उसको वस्तु तक रखे, आप सोचे कि फिर वो धन आपको खुशी भी दे देगा, रिश्ते भी दे देगा और हेल्थ भी दे देगा, वो नहीं हो सकता।
2: नहीं हो सकता,
3: वो आपको मटेरियल बेनिफिट दे सकता है, मटेरियल कंफर्ट दे सकता है। तो दोनों को साथ चलाएं, धर्म को कर्म में लेकर आएं, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाएं, कर्म योग करें, तो फिर आपको वो जीवन के अंदर कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस होगी।
2: क्या बात है, मुझे तो कंटेंटमेंट, जब मैं इनका सवाल पढ़ ही रहा था आपके लिए, तो मेरी शायद फेवरेट कविता है, एक तरह से हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत प्यारी कविता है, कई बार कोट करता हूँ कि जीवन के आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जीवन में जो बोला, सुना, माना, उसमें क्या भला बुरा। और उसके बाद जो प्यारी लाइनें हैं, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ दुनिया के इस मेले में, जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ दुनिया के इस मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी ही दे ले में, हर एक यहाँ पे अपनी भुलावे में भूला, हर एक लगा है यहाँ पे अपनी अपनी दे ले में, कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ, क्या करूं यहाँ, जाऊं किस जगह, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में, क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, ये बहुत खूबसूरत लाइन है, क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का उहा पोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कहीं ये सोच सकूं, जो किया कहां माना उसमें क्या भला बुरा।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज ऑफिशियली द बिगिनिंग ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स फॉर टुडे। और देखो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, इमोशनल सपोर्ट की, ट्रस्ट इश्यूज को हील करने की, या फिर मनी कन्वर्जन, मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट एंड दोस्त। शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी फिलहाल तुम ड्राइव कर रहे हो काम की तरफ, या फिर घर से बैठकर काम करने का प्लान कर रहे हो, या फिर यू आर सर्वाइविंग योर वर्क मीटिंग्स, या फिर ब्रेकफास्ट का डिबैकल, पैकिंग योर लंच, या फिर बच्चों के टिफिन पैक कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, मुझे अपने साथ में रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉर्निंग्स को बनाती हूँ एक्स्ट्रा मिर्चीदार, क्योंकि मेरे पास है ढेर सारी गॉसिप, गपशप, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। एंड साथ साथ में मेरे पास है बॉलीवुड के बैंगर्स, एकदम मिर्चीदार। तो ये सब कुछ चाहिए तो चिपक के बैठे रहो यहीं पर। फटाफट से मुझे फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। और व्हाट्सएप करना है मुझे तो 9033 मिर्ची पर। फटाफट से अपने मैसेजेस ड्रॉप करो, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na viva la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, usko wahan se mat uthao yaar. Hello.
2: हेलो
3: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको बता दूँ। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
2: है? जी उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
2: हाँ
3: सामान उठवा,
2: क्या मजाक कर रहा
3: है? तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है।
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे हैं?
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट विद मिर्ची, फ्रेश माल,
6: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका।

गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। और अब हम चलने वाले हैं एक टाइम ट्रैवलिंग जर्नी पर 1783 में, जब फ्रांस में मॉन्गोल्फर ब्रदर्स ने पब्लिक को बोला ट्रस्ट अस एंड लॉन्च देयर फर्स्ट हॉट एयर बलून। जस्ट इमेजिन। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड टू 1917, द वेरी फर्स्ट पुलित्ज़र प्राइजेस वर अवार्डेड। इमेजिन गेटिंग रिवॉर्डेड फॉर राइटिंग। देन इन 1940, ऑपरेशन डायनामो, ऑल्सो नोन एज द मिरेकल ऑफ डंकर्क, रैप्ड अप विद मोर देन 338,000 सोल्जर्स इवैक्यूएटेड। And then Poland's first partially free election became an important turning point in Europe's political story. And closer to home, aaj ki tareek is also remembered with sadness in India after last year's stampede outside Bengaluru's M. Chinnaswamy Stadium. And that's it for time traveling for today. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein, Surat Mirchi Mornings. Connect karo mujhse Insta aur X par, mera handle name hai Mirchi Pris. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड लेट्स टॉक अबाउट सम बॉलीवुड टी। अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिपोर्ट्स, आमिर खान मे बी गेटिंग मैरिड टू गौरी स्प्रैट ऑन 5th of July in a private ceremony at home. And the plot twist is there is apparently not going to be a giant filmy shaadi. There won't be a helicopter entry, no 27 dance performances, bas close family, close people, low key vibes hone wali hai. Mujhe lagta hai unki dono ex-wives bhi wahan par maujood hone wali hai. Reports also say they've been building a quiet life together for over a year now and they just want to make it official, which is pretty cute and efficient. Very unlike desi wedding spreadsheets, right? लेकिन ऑनेस्टली यार, देयर इज समथिंग कंफर्टिंग अबाउट दिस। बॉलीवुड ने हमें सिखाया था ड्रामेटिक रेन कन्फेशंस और रियल लाइफ में स्टेबल लाइफ, फैमिली का आसपास होना और एक परफेक्ट बनी हुई गर्मा गर्म चाय। इसके अलावा थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए, बस और क्या चाहिए। एंड कैन वी अप्रिशिएट दैट लव स्टोरीज अपेरेंटली डोंट चेक कैलेंडर्स नाउ, समवेयर क्यूपिड इज गोइंग योर एज टाइमलाइन, ये सब क्या होता है यार। होल्ड माय बो एंड आरो, मैं बताता हूँ कि 60 इयर्स में प्यार कैसे करते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज ऑल बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स राइट नाउ, क्योंकि ऑफिशियली तो कोई स्टेटमेंट आया नहीं और मुझे भी ऑफिशियली उन्होंने बुलाया नहीं है, लेकिन एज थिंग्स विल अनफोल्ड आई विल कीप यू पोस्टेड। अभी फिलहाल जाकर मेरी पोस्ट चेक करो। मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472444। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज का वेदर ना मुझे टॉक्सिक काम और इमोशनली अनअवेलेबल लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। ऑफ कोर्स यू गेस्ट इट राइट, मिर्ची मॉर्निंग्स पर अब टाइम है तापमान, वातावरण, इन सब की बातों का। राइट नाउ इट्स सिटिंग एट अ कूल 57 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स क्लियर, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट है अभी, रुको। द विंड इज एक्चुअली मेकिंग इट फील लाइक 55 डिग्रीज फारेनहाइट, यानी कि थोड़ा सा ठंडा रहेगा माहौल। एंड द नेक्स्ट 24 आवर्स विल बी प्रेसिपिटेशन फ्री, यानी कि कोई बारिश नहीं गिरने वाली है, जस्ट लाइक द लास्ट 24 आवर्स। Clear skies will continue through tonight and into tomorrow morning. So if you've been waiting to wear that outfit without carrying an emergency umbrella, you may do so. Aaj ka temperature range dekh lete, low jayega 55 degrees Fahrenheit tak aur high jane wala 87 degrees Fahrenheit tak. तो सुबह स्वेटशर्ट का वेदर रहेगा, आफ्टरनून में सडनली हैदराबाद इन मे टाइप की फीलिंग आने वाली है। एंड क्विक रिमाइंडर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, वेयर योर एसपीएफ 50++++ और साथ साथ में मिर्ची की वाइब्स बना कर रखो। एंड ऑफ कोर्स यू नो लेयर के प्लेयर बनना जरूरी है, बिकॉज मौसम ही कुछ ऐसा है कि ऊपर नीचे जाने वाला है तापमान। फिलहाल हम जाने वाले हैं सुनने मिर्चीदार बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर। अगर जुड़ना है तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPR। एंड व्हाट्सएप पर अगर मुझे मैसेज करना है तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Mirchi fam. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में and welcome to Mirchi Hour के 3 for this hour. सबसे पहले इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी इज सेट टू बिकम इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑन जून 10th बाय क्रॉसिंग 4,399 कंसेक्यूटिव डेज इन ऑफिस मूविंग पास द रिकॉर्ड हेल्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. नंबर 2 पर अ पॉलिटिकल आउटफिट इन इंडिया कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी अनाउंस्ड इट्स स्पोक्सपर्सन लाइनअप इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट सौरभ दास, रिसर्चर एंड फिल्म मेकर विजेता दाहिया एंड आशुतोष रांगा and IIT Kanpur alumnus. They've also announced a protest later this week. And number 3 per actor Anushka Sharma shared that homeopathy played an important role in her life after reposting a video by a physician. And social media did what social media does best. Immediately turned it into a full discussion. Some people supported personal experiences, others raised concerns about relying on alternative approaches instead of evidence-based medical care for serious conditions. And that's it for Mirchi Hour ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: हेलो,
1: हाय शिवानी।
0: हाय
1: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
0: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
1: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
0: समाचार?
1: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
0: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
0: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
1: अच्छा।
0: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
1: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
0: फेवर,
1: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
0: आपको लेनी है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
0: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
1: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
0: आप सिर्फ
1: मेरी बात
0: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
1: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
0: सिर पे करवा ले
1: शिवानी।
0: हेलो,
1: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
0: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी शिवानी शिवानी मेरी बात सुनो, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो, शिवानी मेरी बात सुनो,
0: नहीं
1: नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
0: कुकड़ुकु
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, सुन रहे तो Mirchi Mornings. मेरा नाम है Priscilla और अब हम पता करने वाले हैं गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट.
2: Raj Jules wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,500 per troy ounce. अगर पर ग्राम की बात की जाए तो $144 $144 पर ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का 1 ग्राम का प्राइस है, ताकि आप गोल्ड के प्राइस कंपेयर कर सके इंडिया से. जी हाँ, $140 पर ग्राम, $1440 पर तोला सोने का प्राइस है अमेरिका में. आप खुद कंपेयर कर लीजिए, इंडिया से गोल्ड के प्राइसेस अमेरिका में सस्ते हैं. तो आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में, चाहे पैम सर्टिफाइड बार्स हो, गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एट राज ज्वेल्स. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: ऑलराइट, गोल्ड एंड सिल्वर का रेट तो पता चल गया, बट क्या तुम्हें पता है मुझसे कनेक्ट करने का तरीका? Mirchi Priss इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, दैट्स 9033 6472444. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
2: या या यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज़.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello,
4: Mr. Gotham.
3: कौन बोल रहे हैं
4: सर? मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर, कुछ गाके सुनाएगी?
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना? कोंडा आपने ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको
4: भेज। वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
3: कौन से गाने
4: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
3: सुन ले बात मेरी, बात सुन पहले बात सुन।
4: हाँ सर,
3: और बंद करिए बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
4: सर। बोलिए,
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
4: जी सर।
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर अब राशि जोन आ चुका है।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी मेष राशि, आज स्टबन मत बनो यार। यूनिवर्स इज सेइंग अपडेट अवेलेबल, प्लीज डोंट क्लिक रिमाइंड मी लेटर। लेट गो ऑफ ओल्ड हैबिट्स एंड रिन्यू योरसेल्फ। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक कोरल, लकी नंबर इज 19। टॉरस यानी वृषभ राशि, टुडे इज नॉट टीम विन और टीम लूज, इट्स टीम सबको चाय मिलेगी। कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन। लकी कलर इज पिस्टाशियो ग्रीन, लकी नंबर इज 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, इफ समवन ट्विस्ट्स योर वर्ड्स टुडे पोलाइटली बट फर्मली बिकम योर ओन पीआर मैनेजर। क्लैरिफाई, डोंट कलेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाइक लॉयल्टी पॉइंट्स। लकी कलर इज सिल्वर मिस्ट, लकी नंबर इज 11। कैंसर यानी कर्क राशि, ऊप्स मोमेंट हैपन, इफ यू मेड अ मिस्टेक ओन इट, फिक्स इट एंड मूव ऑन। यूर ह्यूमन नॉट अ सॉफ्टवेयर अपडेट। लकी कलर इज ओशन ब्लू, लकी नंबर इज 27। लियो यानी कि सिंह राशि, डोंट पैनिक बिफोर द प्लॉट ट्विस्ट, थिंग्स आर नॉट कोलैप्सिंग, योर ब्रेन जस्ट ओपन अननेसेसरी टैब्स, कीप शोइंग अप। लकी कलर इज सैफ्रन गोल्ड, लकी नंबर इज 5। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, प्लान्स चेंजिंग लास्ट मिनट, अनोइंग, यस, एंड ऑफ द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली नॉट। Adapt karo, make the new plan look intentional. Lucky color is lavender grey, lucky number is 34. And that was your Rashi Zone part pehla. Agla part lekar aungi thodi si der mein, tab tak tum suno ye Mirchi Dar bangers only on Mirchi Mornings. Aur jaakar mujhse bhi connect kar lo social media par. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my Mirchi fam. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स एंड जस्ट लाइक योर वीकेंड प्लान्स आज का दिन खत्म हो चुका है बट बिफोर आई लीव एक लास्ट बॉलीवुड की टी तो देना बनता है. इब्राहिम अली खान की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो एक दरवाजे के पास खड़े हैं फोन पर बात कर रहे हैं एंड देन ही पुशेस समवन इनसाइड द डोर एंड देन द कैमरा फॉलोज इनसाइड द डोर एंड वी फाइंड आउट दैट इट्स पलक तिवारी एंड अपेरेंटली दिस कपल इज रूमर्ड टू बी डेटिंग. लेकिन असली मुद्दा ये है कि ये वीडियो क्लिप देखने के बाद इंटरनेट पर काफी डिबेट छिड़ गया है क्योंकि In the clip, people online had very different reactions. Some felt Ibrahim's gesture looked rude. Others thought he may have been trying to guide or protect her once paparazzi appeared. The conversation got even bigger after photographers reportedly continued following Palak inside the building. And a lot of people online started talking about celebrity privacy too. And honestly, classic internet hai yaar ye. Same video, 50 opinions, unlimited confidence hai logon ka yaar. Aajkal matlab har koi troll bana phir raha hai. But maybe today's reminder is this. Short clips don't always come with context. And the comment section should not be promoted to Supreme Court. But whatever the real story is, wishing everyone involved more personal space and fewer unsolicited zoom-ins. And that's my cue to leave you and say bye-bye for today. Milenge tumhe kal, same time, same place, same frequency. Tab tak ke liye, you be good. Khao piyo, aish karo, maze karo. वीकेंड आ रहा है उसकी तैयारी करो और मेरा वेट करो. और अगर वेट ना हो पाए मिस कर रहे हो मुझे तो मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर एंड व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे 9033 मिर्ची पर. दैट्स 9033647244. कमिंग अप मिर्ची दर बैंगर्स स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: अरे 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन से गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आपको पता है 1989 की फिल्म परिंदा का गाना प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी, ये परिंदा मूवी के डायरेक्टर वैसे विधु विनोद चोपड़ा थे, लेकिन ये पर्टिकुलर सॉन्ग वॉज शॉट बाय संजय लीला भंसाली जो उस टाइम विधु विनोद चोपड़ा को असिस्ट कर रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड विधु विनोद चोपड़ा वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय संजय लीला भंसाली कि फिर उन्होंने अपनी अगली फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के जितने भी सॉन्ग्स थे उनको शूट करने की जिम्मेदारी संजय लीला भंसाली को दी और यहीं से शुरुआत हुई संजय लीला भंसाली के आइकॉनिक सॉन्ग शूट्स की। उसके बाद तो फिर वो देख दनादन सिक्सर मारते रहे, लेकिन उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं परिंदा फिल्म के गाने शूट करने से हुई। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये गाना देखें तो ध्यान रखें दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ संजय लीला भंसाली। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Rani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो
2: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
1: हेलो
2: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार। कोई
1: कहाँ भिजवाना है
2: तो मैं आपको
1: बता दो।
2: नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
1: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो, एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और
1: पूरा
2: सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है।
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे
3: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: Rani Jeans with Charu, only on Mirchi.

0: आपको पता है आनंद फिल्म जब बन रही थी तो डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने राइटर गुलजार साहब को एक बात बिल्कुल क्लियरली बताई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उन्होंने ये बताया था भाई कि फिल्म की शुरुआत में ही ऑडियंस को पता चल जाना चाहिए कि आनंद राजेश खन्ना साहब का किरदार जो है वो मर चुका है। सस्पेंस में नहीं रखना है कि ऑडियंस पूरी फिल्म में सोचती रहे कि ये जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे या क्या होगा। एंड आई थिंक दिस वर्क्ड ब्रिलियंटली फॉर दैट फिल्म, क्योंकि आपको पहले से पता है वो इंसान नहीं है और आप उसकी कहानी देख सुन रहे हो। एंड देन यू गेट टू नो कि ही वाज सो फुल ऑफ लाइफ, और आपको लगता है कि यार आपकी जो परेशानियां हैं फिर वो कितनी छोटी हैं। तो हम भी फुल ऑफ लाइफ हो सकते हैं, हर मोमेंट को जी सकते हैं जैसे आनंद जीता था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: जिंदगी कैसी है पहेली,

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आपको पता है अर्ली 80s में संजू बाबा, संजय दत्त और कपूर ब्रदर्स यानी कि रणधीर कपूर एंड स्पेसिफिकली ऋषि कपूर, इनका आपस में थोड़ा सा ऐसे झगड़ा हो गया था, खिटपिट हो गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और अक्सर बंदों के बीच में जब खिटपिट होती है तो क्या वजह होती है, बंदी वजह होती है, एंड दैट बंदी वॉज टीना मुनीम। सो उस टाइम पे संजय दत्त एंड टीना मुनीम वर डेटिंग और उसी के साथ ये रूमर्स आए बिकॉज टीना मुनीम वॉज वर्किंग, हैड वर्क्ड विद ऋषि कपूर इन कर्ज मूवी और रणधीर कपूर के साथ वो हरजाई नाम की मूवी में काम कर रही थी। तो ऐसे रूमर्स आए कि वो दोनों के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड हैं, somehow रणधीर कपूर के साथ भी और ऋषि कपूर के साथ भी, which was not true। और इन रूमर्स ने संजय दत्त को बहुत अपसेट कर दिया और उनको ऐसा लगा कि ये रूमर्स कपूर ब्रदर्स ने फैलाए हैं, तो उनकी थोड़ी सी ऐसी खिटपिट हो गई। देन नीतू सिंह इंटरवीन्ड एंड उन्होंने ये सारा जो कंफ्यूजन था ये सॉल्व किया और फिर उसके बाद वो लोग अच्छे टर्म्स पे हो गए। होता रहता है, चलता रहता है, फिल्मी दुनिया है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

गई कि अगर आप कयामत से कयामत तक के 8 से ज्यादा टिकट खरीदेंगे तो आपको आमिर खान और जूही चावला का पोस्टर मिलेगा फ्री फ्री फ्री। एंड गेस व्हाट, इट वर्क्ड। ऑलरेडी लोग फिल्म देखने आ रहे थे, पोस्टर के लालच में और आ गए, फिल्म और हिट हो गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

हाय वो टाइम जब हम फिल्म स्टार्स के अपने फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस के पोस्टर्स अपने कमरों में लगाते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। अभी शायद एज अ स्क्रीन सेवर लगाते होंगे अपने फोन में उनकी फोटो। और क्योंकि एक टाइम पे पोस्टर्स बहुत पॉपुलर थे तो कयामत से कयामत तक फिल्म जब हिट हो रही थी ना, तो इसको प्रमोट करने के लिए बॉम्बे में एक प्रमोशन की

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्च।

आपको पता है 1973 की फिल्म लोफर, उसमें उफ धर्मेंद्र इतने हैंडसम लगते हैं भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पर धर्मेंद्र की सुंदरता मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि ये फिल्म वॉज अडेप्टेड फ्रॉम एन अमेरिकन फिल्म 1961 की पॉकेट फुल ऑफ मिरेकल्स, जो अगेन 1933 की एक फिल्म लेडी फॉर अ डे का रीमेक थी। इसी सब्जेक्ट पे 1989 में एक हांगकांग में फिल्म बनी थी मिरेकल्स नाम से, और इसी सब्जेक्ट पे 2008 में बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी सिंग इज किंग। तो सोचिए फिल्मों का इतिहास मतलब कहां से कहां जाता है भाई। खैर हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। लोफर फिल्म का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं, रिटन बाय आनंद बख्शी साहब, कंपोज्ड बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड सन बाय मोहम्मद रफी साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता
3: हूँ। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
2: नहीं नहीं,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: आपको पता है विनोद खन्ना साहब को कुछ प्रिंट मीडिया में सेक्सी सन्यासी भी कहा जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, क्योंकि फिल्मों में एनीवे उनको बहुत हॉट बहुत गुड लुकिंग माना जाता था, जो कि वो थे। और अचानक से एट द पीक ऑफ हिज करियर 1978 में उन्होंने फिल्मों से अपना ब्रेक अनाउंस कर दिया और 1982 में वो स्पिरिचुअल गुरु ओशो के फॉलोअर बन के अमेरिका में उनके आश्रम में चले गए, जहां उन्होंने बहुत अलग अलग तरह का काम किया, माली का काम किया, रसोई का काम किया। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप एकदम बैठे रहो बस और ध्यान ही करते रहो 24 घंटे, ये तो कहा नहीं, तो काम भी देते थे करने के लिए, तो उसमें बहुत मज़ा आता था। और वो काम जो मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किए, एक माली का काम, यू नो, एक रसोई का काम। रसोई का तो खैर मैं कुकिंग वुकिंग में बहुत इंटरेस्ट लेता था पहले भी, फिर मैं इलेक्ट्रिशियन बना, प्लम्बर बना, मैंने हैवी मशीनरी चलाई, मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीज़ें मैंने की, तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए। कंस्ट्रक्शन वर्क किया मैंने, तो ये चीज़ें मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता अगर मैं उनके साथ मिलता।
0: सही है भाई, जीवन में हर तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, भौतिकता, अध्यात्म, लड़ाई, झगड़ा, प्यार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: One of the finest actresses of Indian cinema, Nutan Ji. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ. उनका फिल्मों में आना शौक था या इत्तेफाक था? एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था.
1: ना इत्तेफाक था ना शौक था, मुझे लगता है एक चूंकि मेरे माता पिता दोनों ही फिल्मों में थे, मेरे डायरेक्टर थे मेरे पिताजी और मेरी माता जी उस जमाने की फिल्म स्टार थी, तो एक नेचुरल चीज. मेरी पहली फिल्म थी हमारी बेटी और उसकी शूटिंग शुरू हुई थी लेट 1949 अर्ली 50 में.
0: अच्छा, इस टाइम ना नूतन जी अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस थी क्योंकि वो बहुत स्लिम थी और आग में घी डालने का काम करते थे रिश्तेदार कि हाय कितनी पतली लड़की है, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ. लेकिन इनकी जो शुरुआती फिल्में आई ना उनमें इनके काम की बहुत तारीफ हुई. फिर वही रिश्तेदारों के स्टेटमेंट्स बदल गए कि क्या टैलेंटेड लड़की है हमारी, पतली है तो क्या हुआ. अच्छा, इसी दौरान नूतन जी को स्विट्जरलैंड भेजा गया एक फिनिशिंग स्कूल में, जहाँ से वो और भी ग्रूम्ड कॉन्फिडेंट होकर लौटी. मैं भी वापस आती हूँ थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची.
2: सावन का महीना

0: レソール。
1: ババヌカレショール。
0: あれババショールね、インソールソールソール。
1: ババヌカレソール。
0: ああ。

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन मिर्ची।

0: नूतन जी जितनी कमाल की एक्ट्रेस थी उनको म्यूजिक का भी उतना ही शौक था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इनफैक्ट उन्होंने अपनी एक फिल्म छबीली में खुद का गाना प्लेबैक भी किया था, लेकिन फिर ये आगे कंटिन्यू नहीं किया। सुनिए इस बारे में बहुत पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मैंने बचपन से, जब मैं 2.5-3 साल की थी, तब से मैंने क्लासिकल गाना सीखा। 14-15 साल मैंने गाना सीखा पंडित जगन्नाथ प्रसाद से, और वो तो मेरा रियाज जारी रहा, लेकिन मैंने उसको इतना फिल्मों में मैंने कंटिन्यू नहीं किया। फिल्म बनाने में एक संगीत की दुनिया और होती है और अदाकारी की दुनिया और होती है, और चूंकि मैं ऑलरेडी एक कामयाब अभिनेत्री रही थी उस वक्त भी, क्योंकि छबीली जब बनी थी उस वक्त मेरी सुजाता भी बन चुकी थी, मेरे 2 ऑलरेडी अवार्ड्स दे थे मुझे, तो उसके बाद मैं ये इंसिस्ट नहीं करना चाहती थी कि भाई मैं खुद ही अपने गाने गाऊंगी, क्योंकि उसमें एक डर था कि अगर मैं ये इंसिस्ट करती तो शायद मैं अच्छे अच्छे रोल्स गंवा देती।
0: ये भी ठीक है। वैसे अगर आप पेइंग गेस्ट मूवी देखे ना, तो उसमें एक सीन है जहाँ पर एक डिबेट पोयम कंपटीशन टाइप का है, तो वहाँ पे जो भी गाया है ना नूतन जी ने, वो उनकी खुद की आवाज है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: तो बताओ हमको,
1: डूब मरो,
0: डूबेगा नहीं तरेगा, छप छप छप छप छप छप छप, डूबेगा नहीं तरेगा, प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।
2: कभी कभी मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 80s से पहले नूतन जी और दिलीप कुमार साहब की कोई फिल्म साथ में नहीं आई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। क्यों नहीं आई, इस बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए नूतन जी ने क्या शेयर किया था।
3: आई तो नहीं, लेकिन हमने एक फिल्म इकट्ठे बनाई थी जो अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से रिलीज नहीं हो पाई। उस फिल्म का नाम था शिकवा, बहुत पहले बनी थी 1951-52 में।
2: इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि उनके फेवरेट को स्टार्स कौन थे।
3: एक तो बलराज जी थे और दूसरे अशोक कुमार जी और राज कपूर जी। राज कपूर जी क्योंकि वो खुद डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो उनको एक फिल्म मेकिंग का बहुत ही नॉलेज है और एज एन आर्टिस्ट वो दूसरे आर्टिस्ट की कदर बहुत करते हैं, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए। और एज एन आर्टिस्ट भी और एज ए हीरो भी मुझे अमिताभ जी बहुत पसंद है।
2: वैसे बच्चन साहब के साथ उनकी एक जो फिल्म आई थी उसे ना हमारे घर में गुड़ वाली फिल्म बोला जाता है। उस फिल्म में गुड़ बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, रिश्ते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। सौदागर फिल्म। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ये रातें ये मौसम
1: हेलो
2: मिस्टर गौतम,
1: कौन बोल रहे हैं?
2: सर मैं एक्चुअली आपसे रहे वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: हाँ, सर, कुछ कुछ
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको।
2: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: कौन से गाने
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
1: सुन ले बात सुन पहले। और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है। सर बोलिए,
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
2: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: एक पुराने इंटरव्यू में ना नूतन जी से थोड़ा ट्रिकी थोड़ा बोल्ड सा क्वेश्चन पूछा गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बड़ा सटली पूछा गया था कि अक्सर फिल्मों में रोमांटिक सीन करते हुए रील वाली फीलिंग का रियल वाली फीलिंग में बदलने का खतरा रहता है। इस पर सुनिए नूतन जी ने क्या कहा था।
1: क्या है कि हम जब काम करते हैं तो एक स्विच ऑन और स्विच ऑफ चीज हो जाती है। उस वक्त के लिए हम डायलॉग याद करते हैं और उस वक्त के लिए वो हम एक्टिंग करते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पर्सनल रिश्ते नाते हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे रह जाते जो हमेशा थे पहले की तरह।
0: वेरी स्मार्ट आंसर। और किन किन एक्टर्स के साथ उनकी जोड़ी पॉपुलर रही इसके बारे में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: देव साहब, देवानंद जी, मेरी पिक्चरें बहुत सी बनी थी, लगातार बनती गई। जब हमारी जोड़ी क्लिक हो गई तो बहुत से प्रोड्यूसरों ने और देव साहब ने खुद भी अपने पिक्चर में हम दोनों को ही लिया था। तेरे घर के सामने, पेइंग गेस्ट, बहुत सी और पिक्चरें थी, मंजिल। उसके बाद राज जी के साथ, राज कपूर जी के साथ अनाड़ी बनी, छलिया बनी, और उसके बाद बनी सुनील दत्त जी के साथ। तो एक जमाना आ जाता है जैसे एक पैर क्लिक कर जाता है।
0: सही है, इसी बात पे ब्रेक ले लेते हैं। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: नूतन जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस एवर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नूतन जी जिस तरह से इमोट करती थी ना, यू जस्ट कांट टेक आईज ऑफ हर फेस। और एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि कोई भी कैरेक्टर प्ले करने से पहले क्या उनके मन में चलता है, कैसे वो तैयारी करती हैं।
1: देखिए, जब मैं भूमिका करती हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हूँ। जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल उसमें खो जाती हूँ। और मैं ये यानी यकीन करना चाहती हूँ कि वो लड़की जो मैं कर रही हूँ, वो मैं खुद हूँ। जो भी उसके साथ अच्छा बुरा हो रहा है, वो मेरे साथ हो रहा है, उस कैरेक्टर के साथ हो रहा है। और उसके मुताबिक मेरा ख्याल है अब वो जो एक्टिंग होती है वो अपने आप खुद ब खुद आ जाती है।
0: और उनकी सभी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस में से उनकी फेवरेट कौन सी रही?
1: देखिए, मुझे वो रोल करने में बहुत ही अच्छा लगा, वो था रोल बंदिनी का। क्योंकि वो रोल बहुत मेरे हिसाब से उसमें वेरिएशंस बहुत थी, कुछ हद तक डिफिकल्ट भी था। और अलग अलग उसमें सारे यानी कि अलग अलग उसमें ढंग थे, अलग अलग उसमें एक्सप्रेशंस थे, अलग अलग फीलिंग्स थी।
0: वैसे ये फिल्म देख के ना मैं थोड़ी सी डिसहार्टन हो गई थी। इतने हैंडसम धर्मेंद्र के प्रपोजल को नूतन जी ने ठुकरा दिया था। तब समझ नहीं थी ना कि क्या मीनिंग था उस फिल्म का। खैर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।

0: करो।
1: नूतन जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो एक पुराने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में उनके प्रोफेशन की वजह से उनको दिक्कत नहीं आती।
2: आती तो है, लेकिन उसमें मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का भी बहुत साथ है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत अंडरस्टैंडिंग है। वो जानते हैं कि भाई ये बहुत बिजी हैं, तो वो ज्यादा डिमांड नहीं करते।
1: और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी एक वजह थी कि नूतन जी कभी थोक के भाव ऐसी फिल्में नहीं करती थी, गिनी चुनी फिल्में करती थी।
2: मैंने कभी भी पूरे मेरे करियर में 5 या 6 से ज्यादा पिक्चरें इकट्ठे कभी नहीं ली। मुझे अपने हॉलीडेज भी मिल जाते हैं और अपने परिवार के साथ भी।
1: और फिल्मों में काम करने के अलावा और क्या करना उनको अच्छा लगता था?
2: इन कामों की वजह से मुझे वैसे दूसरा कोई काम करने को वक्त ही नहीं मिलता, टू टेल यू द ट्रूथ। वैसे घर बार है, सब लोग परिवार हैं, सब बहुत खुश हैं, तो उसमें ही काफ़ी, यानी कि मैंने कहा जैसे मैं हॉलीडेज लेती हूँ तो अपने परिवार के साथ काफी दिन गुजार सकती हूँ।
1: वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: अखा दुनिया के पगलूज एक तरफ और आमिर खान द शादी पगलू दूसरी तरफ।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हो आप और ये कहावत तो सुनी होगी आपने, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। इसलिए इंसान बोलता है कि भाई खा के ही पछता लो, कम से कम एक्सपीरियंस में एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। बट यहाँ पे आमिर खान तो एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस करते ही जा रहे हैं भैया, और ये थमने का नाम नहीं ले रहे। ऑल्दो आई एम नोबडी टू क्वेश्चन हिज पर्सनल चॉइसेस, बट कभी कभी रुक नहीं पाता इंसान। बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट इज कि आमिर खान एक बार फिर से शादी करने वाले हैं। हाँ जी, ये होगा चौथी बार और इस बार वो अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रत से शादी करने वाले हैं ऑन 5th of July। ऑल्दो इस चीज को लेके ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन दोनों की तरफ से ही नहीं आई है, बट बात जो भी हो भैया, शादी एक ऐसा बुखार है जो मेरे जैसा इंसान कभी चढ़ाना नहीं चाहेगा, बट आमिर खान है जो इससे बाहर आना नहीं चाहते। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले।
3: शिवानी,
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी शिवानी शिवानी मेरी बात सुनो, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो, शिवानी मेरी बात सुनो,
2: नहीं
3: नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
4: Radio Mirchi, it's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। ओपनिंग डे की कमाई 7 से 8 करोड़ प्रेडिक्ट की गई है फॉर दिस अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, जो डेविड धवन की शायद से लास्ट डायरेक्टोरियल भी होने वाली है। स्टारिंग वरुण धवन, मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े, ये फिल्म 5 जून को रिलीज होने वाली है। और ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो उनके हिसाब से ये फिल्म डबल डिजिट ओपनिंग तो नहीं, बट 7 से 8 करोड़ की ओपनिंग जरूर कर सकती है। डिस्प्यूट अब लीगल फेज में जा चुका है। मैं बात कर रही हूँ रणवीर सिंह एंड फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज यानी FYCE के डिस्प्यूट की, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रणवीर ने अब फिल्म वर्कर्स बॉडी को लीगल नोटिस भेजा है आफ्टर इट इशूड अ नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव अगेंस्ट हिम इन कनेक्शन विद हिज एग्जिट फ्रॉम डॉन 3। और अब स्पेकुलेशंस हैं कि शायद से FYCE जो है वो अपना ये नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव रणवीर सिंह के ऊपर से हटा ले। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म भारत भाग्य विधाता की बात करना चाहती हूँ, जिसका ट्रेलर लॉन्च मुंबई में किया गया। मूवी 12 जून को रिलीज होने वाली है, जिसको डायरेक्ट किया है मनोज तपाड़िया ने। सो बेसिकली इस फिल्म का नाम पहले नर्स ऑफ कामा रखा जा रहा था, बट जब इसकी कहानी पढ़ी गई, सुनी गई, तो फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि इसमें इंडिया का एसेंस काफी एक्सट्रीम है, एंड दस भारत भाग्य विधाता वॉज द नेम डिसाइडेड। बट ये टाइटल जॉन एब्राहम के पास था। जॉन ने बिना किसी पैसे के या बिना किसी हिंड्रेंस के ये टाइटल इस फिल्म के मेकर्स को दे दिया। बाकी पिछले कुछ टाइम से कंगना रनौत की जो फिल्में बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, उसके हिसाब से होप्स हाई तो नहीं है, बट आई जस्ट विश कि लोग एटलीस्ट फिल्म देखने के बाद कोई डिसीजन बनाए। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

सच सच दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए। हे देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मुझे भी ढूंढ लो आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू इट्स टाइम टू फाइंड मिर्ची फिल्म ची। सो बेसिकली मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ इस दौरान कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे डीएम्स में स्लाइड इन करके अपना नंबर भेजिए, ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। तो भाई आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है गौरांग। हाय गौरांग, क्या हाल है?
3: बढ़िया, आप सुनाओ?
0: बिल्कुल बढ़िया। तो ये गेम आज खेलना चाहोगे आप हमारे साथ?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो देखते हैं कि आपके अंदर का मिर्ची फिल्मची जागता है या नहीं। शुरू करें?
3: यस बिल्कुल।
0: ओके, तो बॉलीवुड के सीरियल किसर किसको कहते हैं?
3: इमरान हाशमी।
0: इमरान हाशमी की फिल्म जिसमें वो क्रिकेटर बने हैं?
3: अजहर।
0: अजहर में उनकी सेकेंड वाइफ कौन है?
3: नरगिस फाखरी।
0: ग्रेट। नरगिस फाखरी किस फिल्म में जॉर्डन के साथ जंगली जवानी मूवी देखने जाती है?
3: इतनी सी चक्की में दो समोसे खाऊं मैं, कौन सी मूवी है वो? रॉकस्टार।
0: मतलब मूवी याद नहीं आ रही थी, डायलॉग पहले याद आया उसके बाद मूवी। ठीक है, तो रॉकस्टार में जॉर्डन का रोल किसने प्ले किया है?
3: रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर की फिल्म जिसमें उनको तीन अलग अलग लड़कियों से प्यार होता है?
3: बचना है हसीनो।
0: ग्रेट। बचना है हसीनो की किस एक्ट्रेस को रणबीर कपूर ने रियल लाइफ में भी डेट किया?
3: दीपिका पादुकोण।
0: दीपिका पादुकोण किस फिल्म में मार्शल आर्टिस्ट की बेटी बनी है?
3: मार्शल आर्टिस्ट की बेटी बनी है,
0: हाँ।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं एक फन गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार, आप कहाँ ही चले जाते हो। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। एंड यस, अगर आप पहली बार मेरा ये शो सुन रहे हैं देन लेट मी टेल यू, इट्स टाइम टू फाइंड मिर्ची फिल्म जी, जहाँ आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अपना नंबर भेजना होता है और मैं आपको कॉल करके इस गेम को खेलती हूँ। तो आज सबसे पहले इस गेम की शुरुआत गौरांग ने की थी, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट। बट उसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ कौन है?
3: दिल्ली से आपका बस क्वेश्चन सुना कि बाइक के साथ ड्राइव पे जा रहा था, थोड़ा बात और मैंने कहा सुना कि दीपिका पादुकोण का जो आपने क्वेश्चन पूछा है,
0: हाँ जी,
3: तो उसका आंसर है चांदनी चौक टू चाइना।
0: बहुत ही बढ़िया, आपके अंदर का जो फिल्मी कीड़ा है वो मचल रहा है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करें
3: प्लीज।
0: तो चांदनी चौक टू चाइना में सिद्धू का रोल किसने प्ले किया है?
3: अक्षय कुमार ने।
0: अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें वो बहन डर गई ये बोलते हैं?
3: भागम भाग।
0: ओके, भागम भाग में सुसाइडल टेंडेंसीज किसको होती है?
3: लारा दत्ता।
0: बहुत बढ़िया, लारा दत्ता की कौन सी फिल्म में छोटा डॉन?

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, usko wahan se mat uthao yaar. Hello.
2: Hello.
3: Hello, aap hold karna ek second bhai saab. Isko wahan se mat uthao yaar, aise nahi uthega yaar. Toot jayega sara saman, toot jayega wahan se. Mat karo usko wahan se. Hello. हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार। कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
2: है? जी उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
2: हाँ
3: सामान उठवा,
2: क्या मजाक कर रहा है?
3: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है।
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे
4: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
6: हिट हिट हिट हिट गाना,
7: हिट गाना, हिट गाना, हिट
5: गाना। Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: बाबूमोशा है स्क्रीन पे दिखने वाली हर एंटरटेनिंग चीज ग्रीन फ्लैग नहीं होती।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हमें टाइम एंड अगेन बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं विच आर अ प्रूफ ऑफ व्हाट आई जस्ट सेड। और आज कुछ ऐसे अप्रोचेस की ही बात कर रही हूँ थ्रू माई पांच का पंच लिस्ट, जिसमें सबसे पहले मैंने ये डिस्कस किया कि भाई किस तरीके से हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है कि अगर लड़की चाहती है कि लड़का उसके प्यार में पड़ जाए तो वो अपना हुलिया बदल ले, अपना लुक चेंज कर ले। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ होता है मैं अंजलि। वही अब नंबर दो पे बात करना चाहती हूँ अबाउट द अप्रोच, अबाउट द थॉट दैट वुमेन बिलोंग टू द किचन। और इस चीज को एट मेजर लेवल प्रूव किया है फिल्म हम साथ साथ हैं ने। हाँ हाँ, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की ये फिल्म। एंड इसमें तो लेजिट एक लाइन है भाई, जहां पे सर जी बोलते हैं कि जिस घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथ से प्यार से खाना खिलाए वही घर घर होता है। हाँ हाँ, हम औरतें तो पैदा ही होते हैं कि भाई आपका पालन पोषण करे, पहले आपकी मम्मी फिर आपकी बीवी, है ना। आए बड़ा। चलिए दूसरे अप्रोच की ओर बढ़ते हैं, नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरीके से अगर एक वुमन को गुस्सा आया तो वो किसी को धोपतुएंगी ना, मतलब उसको पीट वीट भी सकती है। और इस चीज का लेजिट एग्जाम्पल वॉज सफीना फ्रॉम गली बॉय। भाई आप प्यार में है समझते हैं हम, आपका बंदा किसी और के साथ नैन मटक्के कर रहा है गलत है ऑफ कोर्स, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उस बंदी को जाके धोपतुएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा करके देखिए, आपकी भी बैंड बजा दी जाएगी। एंड ऊपर से सवाल ये आएगा कि अरे अपने बंदे को तो संभाल ले। वैसे ऐसे ही और दो अप्रोचेस की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। बाबू मोशाय मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: गलीचता को प्यार का नाम देने में बॉलीवुड काफी माहिर है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय बाबू मोशाय। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो हमें टाइम एंड अगेन बहुत सारी ऐसी फिल्में मिली हैं विच आर रोमांटिक, बट उसके साथ ही कुछ प्रॉब्लमेटिक, सीरियसली प्रॉब्लमेटिक थॉट प्रोसेसेस भी एज अ गिफ्ट हमें परोसा गया है ऑन सिल्वर प्लेटर। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉकिंग को प्यार का नाम दे देना। और ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज ऐसे ही कुछ अप्रोचेस को लेकर आई हूँ थ्रू माई 5 का पंच लिस्ट, जिसमें अब नंबर 4 पे लेट्स टॉक अबाउट नॉट रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज ऑफ वुमेन। और इस चीज को प्यार का नाम दे के स्टॉकिंग को ग्लोरीफाई किया गया है टाइम एंड अगेन। अब एपिक एग्जाम्पल के तौर पे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, ये मूवी काफी प्यारी, दिल के करीब है हमारी, लेकिन भाई साहब जिस तरीके से राज ने सिमरन के ना कहने के बावजूद उनका पीछा किया और ऐसा करते करते करते करते फाइनली जगह भी बना ली उनके दिल में, वॉज थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हुए नंबर 5 में हम उस थॉट प्रोसेस की बात करते हैं जिसमें जनरली विमेन को ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और उनको मैनिपुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कल हो ना हो 6 दिन लड़की इन, भैया लड़की तो वो चाबी लगी गुड़िया है ना, कि आप जितनी चाबी मारोगे उतना आपको नाच के दिखाएगी। तो बस ऐसे अप्रोचेस को आज तक हमने एज ऑडियंस जो ग्लोरीफाई किया है, इट्स हाई टाइम कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें और जो कुछ भी रैंडमली हमें इन द नेम ऑफ स्क्रिप्ट परोस दिया जाता है उस पे ऑब्जेक्शन करें। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hej. Hej. Hej.
1: Hit Gunny.
2: On Radio Mirchi, New York. It's hot.
3: Yeah. Meety Mirchi.
4: Brighten up your day, we will find a way.
3: On Meety Mirchi, aha.
5: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो
6: मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग।
5: ओपनिंग डे की कमाई 7 से 8 करोड़ प्रेडिक्ट की गई है फॉर दिस अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, जो डेविड धवन की शायद से लास्ट डायरेक्टोरियल भी होने वाली है। स्टारिंग वरुण धवन, मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े, ये फिल्म 5 जून को रिलीज होने वाली है। और ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो उनके हिसाब से ये फिल्म डबल डिजिट ओपनिंग तो नहीं, बट 7 से 8 करोड़ की ओपनिंग जरूर कर सकती है। डिस्प्यूट अब लीगल फेज में जा चुका है। मैं बात कर रही हूं रणवीर सिंह एंड फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज यानी FYS के डिस्प्यूट की। Because according to reports, Ranveer ने अब film workers body को legal notice भेजा है after it issued a non

0: cooperative directive against him in connection with his exit from Dawn 3. और अब स्पेकुलेशंस हैं कि शायद से एफ वाइज जो है वो अपना ये नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टर रणवीर सिंह के ऊपर से हटा ले। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म भारत भाग्य विधाता की बात करना चाहती हूँ, जिसका ट्रेलर लॉन्च मुंबई में किया गया। मूवी 12 जून को रिलीज होने वाली है, जिसको डायरेक्ट किया है मनोज तपाड़िया ने। सो बेसिकली इस फिल्म का नाम पहले नर्स ऑफ कामा रखा जा रहा था, बट जब इसकी कहानी पढ़ी गई, सुनी गई, तो फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि इसमें इंडिया का एसेंस काफी एक्सट्रीम है, एंड दस भारत भाग्य विधाता वॉज द नेम डिसाइडेड। बट ये टाइटल जॉन एब्राहम के पास था। जॉन ने बिना किसी पैसे के या बिना किसी हिंड्रेंस के ये टाइटल इस फिल्म के मेकर्स को दे दिया। बाकी पिछले कुछ टाइम से कंगना रनौत की जो फिल्में बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, उसके हिसाब से होप्स हाई तो नहीं है, बट आई जस्ट विश कि लोग एटलीस्ट फिल्म देखने के बाद कोई डिसीजन बनाए। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑन।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी एंड वेलकम टू दिस थ्रो बैक थर्सडे। वैसे तो दोस्तों जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती ही जाती है, लेकिन हम कभी कभार रियर व्यू मिरर में भी देख लेते हैं और शायद उसी के लिए ना थ्रो बैक थर्सडेज बने। तो चलिए आज के इस थ्रो बैक थर्सडे में कुछ पुराने गाने, कुछ पुराने मूवीज के बारे में भी बात करते हैं जिन्होंने यार इतनी सारी मेमोरीज हमें दी है। तो चलिए आज की शाम की शुरुआत करते हैं विद धमाकेदार गाने, बॉलीवुड गॉसिप्स और ढेर सारी नॉस्टैल्जिया right here on Mirchi, it's hot.
1: Kuch kariye, nas nas meri ho de.

0: Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rambala. Burga, burga. Na vietbala, burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर मैं एक्चुअली आपसे रहे वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाते हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: सर कुछ गाके सुनाएंगे?
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर। वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो।
3: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। मैं एक पेशकश कर रहा हूँ। तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
2: सुन ले बात सुन पहले।
3: हाँ सर।
2: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है। सर बोलिए।
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर।
2: और जिसने भी ये नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है। छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: श्याम शारदा, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
2: संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ जोड़ियां स्क्रीन पर नहीं, सीधा दिल पर लिख जाती है, और ऐसी ही एक जोड़ी है अलका याग्निक और सोनू निगम की। और उनका गाना तुम ही देखो ना, फ्रॉम द मूवी कभी अलविदा ना कहना, वो इमोशंस लेकर आता है जो हम बोल नहीं पाते, बस महसूस करते हैं। अब सोनू निगम की आवाज़ जैसे दिल की कन्फेशन, और अलका जी की आवाज़ जैसे उस कन्फेशन को समझने वाली खामोशी, और स्क्रीन पर शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की आंखों में वही अनसेड कहानी, उफ। तो चलिए शाम को थोड़ा फील करते हैं उन्हीं इमोशंस के साथ। और आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन सा सोनू निगम और अलका याग्निक डुओ का आपका फेवरेट गाना है। टेल मी ऑन इंस्टेड RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए तुम ही देखो ना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, जैसे वक्त बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, वैसे बॉलीवुड का म्यूजिक फ्लेवर भी बदल रहा है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जो 90s एंड 2000s में मेलेडी और लिरिक्स डोमिनेट करते थे, आज के वक्त में प्रोडक्शन बीट्स और ग्लोबल साउंड इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ चुका है। जी हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब भी कोई सोलफुल गाना आता है ना, इंस्टेंटली हिट हो जाता है। मतलब ट्रेंड चाहे कुछ भी हो, इमोशंस अभी भी किंग है। तो आप भी बताना, आप भी कौन सी ऐसी ओल्ड स्कूल मेलेडी पसंद करते हो जो आज के न्यू एज बीट्स को भी बीट कर दे। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरी पसंद की ओल्ड स्कूल मेलेडी ये रही आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ना एक इंटरेस्टिंग फेज चल रहा है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, थिएटर्स वापस फुल हो रहे हैं, पर ऑडियंस बदल चुकी है। अब लोग हर फिल्म के लिए थिएटर्स नहीं जाते, सिर्फ उन फिल्म्स के लिए जाते हैं जो एक्सपीरियंस देती है। जैसे जब कोई बिग स्केल एक्शन या विजुअल स्पेक्टेकल आता है ना, तब लोग बोलते हैं कि यार इस मूवी को तो थिएटर में ही देखना चाहिए। लेकिन बाकी कॉन्टेंट OTT पे इक्वली स्ट्रांग चल रहा है। मतलब बॉलीवुड अब दो ट्रैक्स पर चल रहा है, इवेंट सिनेमा और इंटीमेट स्टोरी टेलिंग। तो आप भी बताओ दोस्तों कि आप थिएटर जाने के लिए क्या चूज करते हो, स्टोरी या स्केल? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कना दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर ज़ोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और ज़ोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज उसके पीछे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा, और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं, गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virbala burga. Mirchi, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है, आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, मिर्ची फ्रेश माल।
5: रेट्रो मैजिक और डांस फ्लोर एनर्जी के साथ सुनो चुनरी चुनरी, लेट्स गो।
6: अच्छा।

0: इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और चलिए आज की शाम में करते हैं थोड़ा रियल टॉक। जी हाँ यार, आजकल मार्केट ना हर वीक चेंज हो ही जा रहा है, कभी रेट्स ऊपर कभी नीचे, कभी सेंटिमेंट ही फ्लिप तो कभी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा कि यार ड्राइव टाइम भी ना थोड़ा सा दर्द दे रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, बल्कि ये होता है कि यार मेरा बजट क्या क्या अलाउ कर सकता है। स्पेशली अगर होम बाइंग के बारे में बात करूँ ना, तो स्मार्ट होम बाइंग ट्रेंड फॉलो करने से नहीं बल्कि नंबर्स को ढंग से समझने से होती है कि आप कितना कंफर्टेबली कोई भी नया घर अफोर्ड कर सकते हो और किस तरह प्लान कर सकते हो, स्पेशली ऐसे चेंजिंग सिचुएशन में भी। और इसी क्लैरिटी के लिए एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आए हैं मेरे दोस्त बीच फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। तो चलिए ऐसे डायनामिक मार्केट में बजट को कैसे स्मार्टली प्लान करें, सुनते हैं बीच से। ओवर टू यू बीच।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, मेरे साथ अब मूड को भी थोड़ा सूट पहनाओ और यार डांस के बीट्स पर टाई पहन के नाच लो, क्योंकि एक ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, बात हो रही है बदतमीज दिल। यार इस ट्रैक का चार्म ही ये था कि ये गाना ना सूट में भी पार्टी करवा देता था। बेनी दयाल और शेफाली अल्वारेस की वोकल्स एकदम मिस्चीफ और मस्ती मोड में थी, और प्रीतम का ग्रूव यार ऐसा कि ट्रैफिक लाइट पर भी ना शोल्डर्स हिलने लगते थे। और मज़े की बात तो ये है कि ये जो गाना है यानी बदतमीज दिल फ्रॉम द एल्बम ये जवानी है दीवानी, इस गाने की कोरियोग्राफी रेमो डी सुजा ने की थी, और शायद इसीलिए इस गाने को ना बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिला था। सो जी हाँ, अगर आप वो हुक स्टेप कॉपी करते हो तो जी उसके पीछे एक एक्चुअल ट्रॉफी एनर्जी भी है। तो यार आप भी बताना कि बदतमीज दिल पर कभी क्यूट सा मूव किया है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और दोस्तों ये जो गाना है बदतमीज दिल, माने ना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, आपके लिए बजने वाला है अभी। लेकिन यार इस एल्बम के और भी कई सारे गाने हैं जो जिसके बारे में हम बातें करेंगे। और आप भी मुझे बताना ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको हिट लगते हैं। टेल मी ऑन इंस्टा। तब तक के लिए बदतमीज दिल राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, एक ऐसा गाना, एक ऐसे एल्बम का कि यार होली का सीजन हो या ना हो, लेकिन ये गाना बजते ही दुनिया रंगों के बैंडविड्थ पर आ जाती है। जी हाँ, बात हो रही है बलम पिचकारी की, फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। वैसे तो यार ये गाना ही इतना, मतलब इतना ज़्यादा अमेजिंग था, क्योंकि इसमें था थोड़ा कलर, थोड़ा केओस, बट फुल ऑन मस्ती। विशाल ददलानी का स्वैग और शलमली की प्लेफुल वोकल बाउंस, यार ये कॉम्बो इस गाने को ना इंस्टेंट फेस्टिवल हिट बना देती थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि रणबीर कपूर ने बताया था कि इस गाने की शूटिंग ऑलमोस्ट 8 दिन चली थी, और धूप के साथ डांसर्स और उनकी एनर्जी लेवल यार फुल ऑन मैराथन टाइप सिचुएशन थी। तो जी हाँ, ये भी मेंशन किया था कि शूट के दौरान ना कुछ तो भांग वाली किस्से भी हुए थे। वेल, ये तो बॉलीवुड है और यहाँ गुलाल के साथ स्टोरीज भी उड़ती है। तो आप भी बताना कि आपका मोस्ट फिल्मी होली मोमेंट क्या था, और वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको भी बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और फिलहाल के लिए सुपरहिट एल्बम का सुपरहिट गाना बलम पिचकारी, फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कभी कभार कुछ गानों में कुछ कलाकारों की एंट्री ऐसे हो जाती है कि यार कलेक्टिव रिएक्शन आ जाता है ऑडियंस से, दैट क्वीन इज हियर। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान रेखा भरद्वाज की आवाज में ये जो गाना है घगरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, यार इनकी आवाज़ ने वो एक ऐसी अर्थी टेक्सचर दी थी कि फुल ऑन फोक गाने को भी प्रीमियम बना दिया था। और विशाल ददलानी ने उसमें जो पंच डाला था उसके बाद प्रीतम का कंपोजिशन, मतलब यार देसी मीट्स ब्लॉकबस्टर। तो यार मज़े की बात तो ये थी कि जब लोगों ने इस गाने के बारे में, घगरा इस गाने के बारे में बस सुनी थी, तब तभी पता चल गया था कि माधुरी दीक्षित का ये आइटम सॉन्ग रहने वाला है। और इसके पहले लुक से ही यार ये रिपोर्ट हो चुका था कि रणबीर कपूर के साथ उनका डांस मोमेंट इस गाने में दिखाई देगा, और यही इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, दैट द क्वीन वॉज बैक विथ अनादर आइटम सॉन्ग। तो जी हाँ, माधुरी दीक्षित का वो कौन सा ऐसा आइकॉनिक गाना है जो आपके लिए भी फॉरएवर नंबर वन है? मेरे लिए तो ये उस उनके लिस्ट में से एक तो है ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें यार माधुरी को देखते ही मतलब बस मन करता है कि देखते जाओ देखते जाओ। तो शायद इसी के वजह से ये गाना भी हिट बना था फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी। तो चलिए बजाते हैं घाघरा। लेकिन आप भी मुझे बताना, व्हिच इज योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। चल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और तब तक के लिए माधुरी दीक्षित का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La fiesta la burka.
0: Mirchi, burka.
2: Hello.
3: हेलो उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
2: हेलो
3: हेलो आप होल्ड कर रहे हैं एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाते
2: हैं जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा
2: सेंसेक्स
3: तो आप ऐसे उठाना है इसको।
2: हाँ
3: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे?
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धि के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2013 के एल्बम के उस गाने की जिसके वजह से ना मतलब सूटकेस पैक्ड हो या ना हो दिल ऑटोमेटिकली इलाही मोड़ पे चला जाता है। जी हाँ, ये जवानी है दीवानी का गाना इलाही संग बाय अरिजीत सिंह। वैसे यार मजे की बात तो ये कि अरिजीत सिंह की ब्रीजी ओपन थ्रोटेड डिलीवरी और प्रीतम का लाइट गिटार लेड अरेंजमेंट मिलकर एक ऐसा वाइब क्रिएट करता था जैसे कि यार जिंदगी ना हाँ बोल रही हो। मतलब लिरिक्स भी अमिताभ भट्टाचार्य के एकदम सिंपल से, ऑनेस्ट से और सीधे दिल तक पहुंचने वाले। वैसे तो ये जो गाना है इलाही, इसका रिप्रीज वर्जन मोहित चौहान ने गाया था क्योंकि यार सेम जर्नी थी लेकिन अलग का टेक्सचर था। तो दोनों वर्जन अगर सुनो ना तो लगता है कि यार एक ही सफ़र को दो नज़रियों से देखा गया है। फिल्म में वैसे रणबीर कपूर के ट्रैवल मॉन्टाजेस ने भी इस ट्रैक को प्योर बैकपैक एंथम बना दिया था। मतलब जब भी ट्रैवल का मन करे ना ये गाना दिमाग में डेफिनेटली आता है। तो चाहे हेडफोन्स पे सुन लो या फिर अपने गाड़ी में, यार ये गाना कहीं और ट्रांसपोर्ट कर ही देता है। तो चलिए सुनते हैं इस हिट एल्बम का ये अमेजिंग सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बताना वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है, वो बजाते हैं यहाँ पर। फिलहाल सुनते हैं इलाही फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ¡Ay! ¡Ahora va!
1: ¡Ahora va!
0: ¡Hit Gunny!
2: Radio Merchy, New York. It's hot.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों की जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम 3 का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Maika.
1: Sham Shanda. Let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों बॉलीवुड में कमबैक का चार्म अलग ही होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी कोई एक्टर ब्रेक के बाद वापस आता है ना, तो ऑडियंस का रिएक्शन इमोशनल भी होता है और क्यूरियस भी, क्योंकि उस एक्टर के साथ मेमोरीज जुड़ी होती है। और जब वो वापस स्ट्रांग रोल में आता है ना, तो यार वो सिर्फ एक कमबैक ही नहीं, एक मोमेंट बन जाता है। और ऐसे फेवरेट एक्टर को या एक्ट्रेस को इतने सालों बाद फिर एक बार बड़े पर्दे पे देखने का चार्म ही अलग होता है। वैसे आजकल ऐसे कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ये भी ट्राई कर रहे हैं कि वो OTT पे आए, तो यार बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे उनका ट्रांजिशन देखना और बहुत सालों पहले जो उन्होंने हीरो के रोल किए थे वो चेंज होकर अब वो एक एक्टर या कैरेक्टर रोल कर रहे हैं, ये देखना भी एक अलग ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप भी मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा कमबैक है एक बड़े एक्टर का जो आपको बहुत पसंद आया। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Pepe Mirci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirci, murga.
2: हेलो
3: हाय शिवानी.
2: हाय
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार.
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर.
3: मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है. अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड. चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे. हाँ? अभी कर लेना. शिवानी ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता. मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ.
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना. आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो. प्लीज फोन मत काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ. मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का, बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं सुनीति चौहान की आवाज में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों एडल्ट हुड का भी एक अजीब सा वर्जन होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी एक वक्त था जब दोस्त रोज मिल जाते थे, लेकिन अब प्लान्स कैलेंडर पे होते हैं और सिटीज के नाम फ्रेंडशिप्स के बीच में आ जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक मैसेज आता है, आई एम इन टाउन फॉर अ फ्यू आवर्स, कैन वी मीट। और फिर क्या, पूरी ट्रिप के बीच में एक छोटा सा वक्त ऐसा निकलता है, चाहे फिर वो क्विक कॉफी हो, कभी लेट नाइट फ्राइज हो, कभी बस एक छोटा सा ड्राइव। लेकिन मिलते ही ना दोस्त की वो पहली लाइन होती है कि यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला, और नेक्स्ट 2 घंटे में पूरा पुराना वर्जन ऑफ योर सेल्फ वापस आ जाता है। और मज़े की बात तो ये होती है कि इतने लंबे गैप के बाद भी ना कॉन्वर्जेशंस वहीं से शुरू होते हैं जहाँ लास्ट टाइम छोड़ी थी। और शायद इसीलिए पुराने दोस्त स्पेशल होते हैं, उनके साथ एफर्ट नहीं लगता, बस थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। तो दोस्तों अगर इस वीक आप भी किसी पुराने दोस्त से मिलने वाले हो तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालना वही पुरानी यादों के लिए, क्योंकि कभी कभी एक क्विक मील में भी फुल थेरेपी लगती है। और मुझे जरूर बताना कि आपके वो पुराने दोस्त के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरे उस पुराने दोस्त के लिए जिससे मैं मिलूंगी उसके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।
1: Just bounce.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: क्या होता है जब एक लॉ एनफोर्सिंग लॉ अबाइडिंग पुलिस ऑफिसर को प्यार हो जाता है एक ड्रग स्मगलिंग हॉटी चिक से. दैट इज द प्रेमिस ऑफ द स्टोरी जो मैं अभी दो दिन पहले देख रही थी जिसका नाम है चुंकिंग एक्सप्रेस. तो ये फिल्म ना इंग्लिश में है ना हिंदी में है. इट इज डायरेक्टेड बाय अ हांगकांग डायरेक्टर कॉल्ड वॉन कार वाई. और ये फिल्म मैंडरिन और कैंटनीज के बीच में स्किप करती है तो आपको सब टाइटल्स पढ़ने पड़ेंगे. बट क्या पिक्चर बनाई है. मतलब आप सोचो कि आप एक पुलिस ऑफिसर हो, आपको हर चीज राइट साइड ऑफ द लॉ में पसंद है, लेकिन आपको प्यार हो जाता है एक ऐसे इंसान से जिसे वास्ता ही सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ द लॉ से. हाउ डू दीज टू पीपल फॉल इन लव एंड कीप द रिलेशनशिप अलाइव. इन फैक्ट कई बार जब मेरे एक्स बॉयफ्रेंड्स को मेरा भाई देखता था ना तो मुझे कहता था कि रोशी एक बर्ड और एक फिश मोहब्बत तो कर सकते हैं लेकिन अपना नेस्ट कहाँ बनाएंगे. तू अपने से इतने विपरीत लड़कों को कहाँ से ढूंढ कर लाती है और इन रिलेशनशिप्स को सस्टेन करने की कैसे आकांक्षाएं रखती है. आई लव माई न्यू एंड इम्प्रूव्ड हिंदी दीज डेज बट दैट सेड. क्या आपको भी किसी से प्यार हुआ है जो बिल्कुल आपके ऑपोजिट है. यू हैव नथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट फॉर द मोहब्बत दैट यू फील इन योर हार्ट फॉर देम. अगर हाँ देन आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड Tell me about it. Hit me up on Insta या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead and do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची. It's hot.